0: Question दीते हो नो नॉट दैट नाउ ऑल्सो आई वॉन्ट टू से दैट वी हैव नॉट वी डिडंट लूज द इलेक्शन इट इज दे आर फोर्सफुल अटेम्प्ट टू डिफीट अस आई वेंट इनसाइड फॉर फ्यू मिनट्स दे किक मी इन माई बेली दे किक मी इन माई बैक साइड एंड यू कैनॉट इमेजिन वॉट हैपेंड बिकॉज दैट टाइम सीसीटीवी वॉज ऑफ दे जस्ट थ्रस्ट मी Throw me out from the counting station. I am now free born. I gave full life for service. Now I am free born. So, I have to do some work. That I will manage to do it.
1: ममता जी ने साफ बताया है कि जिस तरीके से चुनाव में लूट मचाया गया है हम हारे नहीं है पर जिस तरीके से लूट के हराया गया मैं आपको मतलब सुबह से मैं ऐसे 100 कैंडिडेट से बात कर चुका हूं जो कह रहे हैं कि 17 सी फॉर्म और ये मैं पहले भी कहा हूं मैं फिर कह रहा हूं कि ईवीएम जो ईवीएम में वोट होता है वो शायद ना मैनिपुलेट हो लेकिन ईवीएम्स कैन बी रिप्लेस्ड तो बहुत जगह से मेरे पास हमारे पास फीडबैक आया है और ये रिटर्निंग ऑफिसर को काउंटिंग वाले दिन पे जमा भी दिया गया है कि जिस ईवीएम पे वोट हुआ है जब उसको काउंटिंग टेबल पे मैच कर रहा है तो सीरियल नंबर 17 सी के साथ मैच ही नहीं कर रहा है
2: इतना दिन संविधान के हिसाब से मुख्यमंत्री का पद में था तो संविधान तो सबसे अच्छा उसको मालूम होना चाहिए कि संविधान में कैसा होते हैं ऐसा तो घर नहीं है जो जैसा बोलेंगे ऐसा होगा
3: बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी जिस प्रकार की स्टेटमेंट दे रही है ये अराजक स्टेटमेंट है और कहीं ना कहीं राज्य में और भारतवर्ष में अराजकता फैलाने की एक साजिश है शी शुड डेसिस्ट फ्रॉम गिविंग सच काइंड ऑफ irresponsible statement. This is democracy, and democracy in India should always be respected.

0: Chelsea, thank you so much for joining us and bringing us those details. We're tracking more updates coming in from West Bengal at this hour. After the historic political shift of the BJP sweeping the 2026 West Bengal Assembly elections, securing as many as 207 seats and ending the Trinamool Congress's 15-year rule, the new BJP government is set to be sworn in on the 9th of May. And defeated Chief Minister Mamata Banerjee has refused to resign, claiming that her party did not truly lose and has even alleged irregularities in the election. The BJP has sharply criticised Mamata Banerjee for refusing to resign despite her party's massive defeat, accusing her of having no respect for democracy. While constitutionally, the Chief Minister must enjoy the confidence of the State Assembly, as per the convention, a Chief Minister who has lost majority should resign. Under Article 164(1), now the Chief Minister holds office during the Governor's pleasure. If the defeated Chief Minister refuses to resign, then the Governor can intervene and dismiss the Chief Minister as well as her Council of Ministers. We have some reactions lined up for you on this. Let's listen in.
1: No, not that. Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. I went inside for few minutes. They kicked me in my belly, they kicked me in my backside, and you cannot imagine what happened, because that time CCTV was off. They just thrown me out from the counting station. I am now free born. I gave full life for service. Now I am free born. So I have to do some work.
2: ममता जी ने साफ बताया है कि जिस तरीके से चुनाव में लूट मचाया गया है, हम हारे नहीं है, मतलब जिस तरीके से लूट के हराया गया, मैं आपको मतलब सुबह से मैं ऐसे 100 कैंडिडेट से बात कर चुका हूं, जो कह रहे हैं कि 17 सी फॉर्म, और ये मैं पहले भी कहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि ईवीएम जो ईवीएम में वोट होता है वो शायद ना मैनिपुलेट हो, लेकिन ईवीएम्स कैन बी रिप्लेस्ड। तो बहुत जगह से हमारे पास फीडबैक आया है, और ये रिटर्निंग ऑफिसर को काउंटिंग वाले दिन पे जमा भी दिया गया है कि जिस ईवीएम पे वोट हुआ है, जब उसको काउंटिंग टेबल पे मैच कर रहे, तो सीरियल नंबर 17C के साथ मैच ही नहीं कर रहे।
3: बीजेपी हैज क्रिएटेड हिस्ट्री इन बंगाल विद यू नो द कमिंग इन एंड विनिंग द इलेक्शंस। आई एम बीइंग जॉइंड बाय सीनियर लीडर ऑफ द बीजेपी दिलीप घोष, हु इज अ विनिंग कैंडिडेट फ्रॉम द खड़गपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए सर। सर, जब हम खड़गपुर पे मिले थे फेज वन के पोलिंग के दिन, आपने मुझे बोला था कि खेला शेष होबे, अब आप क्या कहना चाहेंगे?
4: हाँ, खेला तो टीएमसी ने शुरू की थी, लोगों ने 15 साल उनको दिया खेलने के लिए, खेला होवे लोग देखते रह गए कब खेला होवे। अब खेला ख़त्म हो गया है, जनता ने ख़त्म किया है, खेल नहीं पाए लोग, 15 साल बर्बाद किया, भ्रष्टाचार, खून, हिंसा और परिवारवाद, लूटपाट में चला गया, लोग डर डर के जिए, लोग मुक्ति चाह रहे थे, चुनाव कमीशन ने वो रास्ता दिया लोगों ने, और बदली कर दी सरकार की, और नया सरकार की उम्मीद है, मोदी जी का ऊपर पूरा भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री बोल के गए थे 5 साल हमको दे दीजिए, हम बंगाल को सुधार देंगे, लोगों ने उन पर भरोसा रखा।
5: इतना दिन संविधान के हिसाब से मुख्यमंत्री का पद में था, तो संविधान तो सबसे अच्छा उसको मालूम होना चाहिए कि संविधान में कैसा होते हैं। ऐसा तो घर नहीं है जो जैसा बोलेंगे कैसा होगा।
6: बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी जिस प्रकार की स्टेटमेंट दे रही है, ये अराजक स्टेटमेंट है, और कहीं ना कहीं राज्य में और भारतवर्ष में अराजकता फैलाने की एक साजिश है। शी शुड डेसिस्ट फ्रॉम गिविंग सच काइंड ऑफ इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। दिस इज डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया शुड ऑलवेज बी रेस्पेक्टेड।
7: वी आर आल्सो जॉइन्ड इन फैक्ट नाउ बाय मिस्टर महेश जेठमलानी। Mr. Jethmalani, thanks very much for joining us here on the Buck Stops Here, because this is something on which the buck needs to stop. A very strange situation we were just discussing with Mr. Sundaram, the West Bengal Chief Minister, saying, I'm going nowhere. What happens now? She's saying my election was stolen.
8: Well, Mamata Banerjee is no one to say that the election has been stolen from her. The election commission certifies the result of an election, right? Now what happens is, if she has a problem, she has to go to court, file an election petition, so on and so forth.

0: But now what happens is that every chief minister holds office at the pleasure of the governor. If she insists on sticking like a lemming to her chair, then the chief minister must unceremoniously dismiss her. I would like to say, given this conduct, kick her out, right? Because this is unpardonable. This is unprecedented. And this is a challenge to our whole democratic system. And it puts the whole country and our system in very poor light. And actually, we have the most functioning democracies in the world. I consider India's democracy to be more functioning than both the UK and USA or any other European country, right? And this is a real slate against us. I mean, it is an insult. And she deserves to be a taught a lesson, right? And I'm glad she did this. I'm glad that this is her attitude so that the governor can dismiss her instead of her gracefully resigning. And also remember, Padmaja, that as per the Constitution, right, every legislative assembly has a tenure of 5 years. It ceases. After that, the legislative assembly is no longer a legislative assembly because it has no members. The members lose their membership by efflux of time. 5 years is the cut-off date. So when 5 years expired from the last election, they're not MLAs anymore. And she is not a chief minister anymore. So her, in a sense, she's completely mistaken. And she has no basic principles of constitutional theory, right? She has ceased to be a chief minister from the day the election was announced because of the expiry of time. In fact, she's only an acting chief minister, right? So she has to step down or she'll be dismissed.
1: Well, NDTV's editor-in-chief Rahul Kawal has exclusively spoken to Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sarma. Listen in to the conversation.
2: सर ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो कहती हैं कि 100 सीटें मुझसे लूटी गई मैं हारी नहीं ये छीनी गई मुझसे चीटिंग हुई वो कह रही मैं रिजाइन नहीं करूंगी
3: देखिए रिजाइन नहीं करेगा तो उनको डिसमिस कर दिया जाएगा तो उनका हिसाब से थोड़े देश चलेगा तो एक समय तक राज्यपाल महोदय अपेक्षा करेगा उसका बाद सी विल बी डिसमिस एज सिंपल एज दैट आपका रिजल्ट हो गया चुनाव का परिणाम डिक्लेयर हो गया आप बोला है मेरे से 100 सीट जीत छीन के लिया है तो मैं भी बोलूँगा कांग्रेस ने जो 19 सीट जीता है वो भी मुझे छीन के लिए लिया गया है मुझको तो 126 ही मिलना चाहिए था थोड़े देश ऐसे चलता है तो बहुत भारत जैसा देश है इसलिए एक सीएम को इतना दिन लोगों ने सह लिया आपका बॉर्डर में आप फेंसिंग करने नहीं देते हो और आप बोलते हैं मेरे से छीन लिया गया आपसे तो बहुत पहले से ही आपको ये रिजल्ट आपका पास होना चाहिए था पश्चिम बंगाल का लोगों ने आपको बहुत दिए और आज आप उन्होंने बीजेपी को मैंडेट दिया बोला है मैंने रिजाइन नहीं करूंगा जैसे आपका रिजाइन करे ना करने का ऊपर समाज चलेगा
2: नहीं उनका चार्ज है कि
3: इंडिविजुअल कैनॉट
2: इलेक्शन
3: बी
2: कमीशन का
3: बिग अगेंस्ट
2: मिसयूज किया
3: सोसाइटी
2: गया एसआईआर के जरिए डिलीशन ऐसे हुए ताकि टीएमसी के कैंडिडेट्स को और उनकी पार्टी को चोट पहुंचे कि तंत्र एक तरीके से ईसी और बीजेपी ने मिल के चुनाव लड़ा ये उनका आरोप
3: ये कहाँ गारंटी है नहीं, राहुल जी एसआईआर होना सुप्रीम कोर्ट हैज मैंडेटेड द एसआईआर आपने सुप्रीम कोर्ट गया सुप्रीम कोर्ट हैज सेड नो यू आर रॉन्ग इलेक्शन कमीशन इज करेक्ट देन वो डिबेट तो समाप्त हो चुका है ये डिबेट कहाँ रहा ये तो डिबेट सुप्रीम कोर्ट का फ्लोर में ही समाप्त हो चुके हैं एसआईआर किया इसलिए मैंने हार गया अरे एसआईआर में जिसका नाम काटे गए हैं सब नाम आपका खाता में दे दूं फिर भी आप जीत रहे क्या
2: नहीं गैप गैप
3: ऐसे
2: बहुत ज्यादा
3: क्यों आप बोलते हैं
2: आपके हिसाब से
3: गैप
2: जो
3: कैसे ज्यादा है
2: नहीं नहीं आपका वोट शेयर गैप बहुत ज्यादा है अगर एसआईआर के सारे वोट्स भी जोड़ दो तब भी तृणमूल नहीं जीतती इनफैक्ट हमारा आंकड़न तो यह है जो डेटा फाई की टीम ने किया
3: तब भी तृणमूल नहीं जीते हैं
2: यस यस आप सारे बाकी ऑपोजिशन लीडर्स को भी एक कर लो तब भी तृणमूल नहीं जीतती है सारे ऑपोजिशन को भी जोड़ दो तब भी 163 सीटें आती हैं बीजेपी की
3: आप देखिए नहीं एसआईआर में मरे हुए लोगों का नाम काटे एसआईआर ने दो जगह में जिसका नाम थे उसका नाम काटे फाइनली 27 लाख 30 लाख जो भी जीवित लोगों का नाम एक अलग लिस्ट में चला गया है उसमें भी हिंदू एंड मुस्लिम है और आपको आपका खाता में इफ वी गिव 90% वोट्स ऑल्सो 10 सीट का परिणाम चेंज हो सकेगा, उससे तो नहीं होगा चेंज। तो आपको लगता है कि स्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन मींस आपका खिलाफ है, ये तो देश थोड़े ऐसे चलते हैं। बहुत मैंने यही बोला हूँ कि डीडी को ग्रेसफुली रिजल्ट एक्नॉलेज करना चाहिए, और जो क्रिमिनलाइजेशन हुआ बंगाल पॉलिटिक्स, आप देखो 2021 में तृणमूल जीते, हजारों लोग असम तक भाग के आए, आज बीजेपी जीते, आज तो भरोसा आ गया, नोबडी इज फ्लीडिंग टू असम टुडे। तो चेंज तो दिखने ही लग गया तुरंत। कल प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मैं हर पॉलिटिकल पार्टी को अपील करता हूँ, राजनीतिक हिंसा नहीं होना चाहिए। कोई हिंसा नहीं है आज वेस्ट बंगाल में, सिचुएशन हैज इम्प्रूव इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट। डीडी को तो आई थिंक सी शुड लुक बैक।
1: We'll track more updates on this story. Well, the political temperatures in West Bengal is soaring after Mamata Banerjee's shocking defeat, with the war of words now intensifying between the TMC, the BJP and the India bloc. Mamata Banerjee has launched a blistering attack on the Election Commission, calling the Chief Election Commissioner the villain of this election and alleging that over 100 seats were stolen in what she termed as a black day for democracy. She's also accused the BJP workers of barging into polling stations and even hijacking counting centres. Backing her was Abhishek Banerjee, who has alleged violence against TMC workers and demanded that CCTV footage from counting centres be made public. The opposition India bloc has rallied behind Mamata Banerjee, with Rahul Gandhi calling it a theft of mandate and Akhilesh Yadav terming it the darkest day in political history. But the Election Commission has firmly denied all these charges, saying that there were no complaints, no FIRs and that the CCTV cameras were never switched off.
4: I am grateful to all my India team's leader. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance. They said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong for the next days.
1: On that note, slipping into a very short break, more news and updates on the other side. Be with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
4: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेश से घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
5: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
6: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
7: ओडिशा का है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
8: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
9: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड the real politics of CPM and a left democratic front.
10: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
2: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
11: The results with the BJP winning more than 200 seats clearly answer those questions. Our teams on the ground, in the studios, in the newsroom, we keep tracking every twist. We try to stay away from the noise, try to use the election analytics to bring the coverage together for you. 90% voting is not common. That's 140 elections with less than 70%. Tuvendu Adhikari leading at this moment. 5 states, 824 assembly seats, an election that felt more like a war.
6: Again, going to shift focus to West Bengal, bring in our colleagues from the ground as well.
11: We've got some breaking news just coming in.
12: Kanchan Gupta to wear this morning. Green was not one of them. Kanchan, what's going on here?
6: Khela ho be.
13: Vijay is finishing off every existing political force.
12: This holds, Pradeep Gupta will be dancing. Joining us now, live and exclusive on NDTV, the architect of this historic victory.
14: Janta ko badhai de raha hu.
11: To all our viewers who've joined us in this long day, thank you very much for spending your time, for trusting NDTV.
15: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
16: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
17: अरे मेरे राजा।
18: सबका राजा आर प्योर मसाला।
19: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
14: So many attacks.
19: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
14: It's incredible.
19: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
14: Welcome to Left, Right and Center.
19: Hard facts.
14: War struck country.
19: Hard questions.
14: In the Ukraine.
19: 30 years of trust.
4: In the Kargil area.
14: North Ukraine.
4: In France. In Italy.
14: At Srinagar.
4: I am Iskandar.
14: Vishnu Shom for NDTV.
19: Vishnu Shom. Only on NDTV.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
4: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेश से घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
5: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री।
6: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
7: ओडिशा का है। रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
8: I think it will be good to bring back the confidence of industry.
9: The people of Kerala understood

0: aspirations in this film too. A short clip from the film has gone viral, wherein Vijay drives a car, who believe it was a nod to his plan to become a chief minister in 2026. Whether it was destiny or daring, Vijay has arrived with a bang. Bureau Report, NDTV.
1: All right, let's turn our attention now to West Bengal after the historic political shift of the BJP sweeping the assembly elections, securing 207 seats and ending the Trinamool Congress's 15-year rule. The new BJP government, we're told, is set to be sworn in on the 9th of May. This after defeated Chief Minister Mamata Banerjee has declared that she will not resign. She's refused to resign, claiming her party did not truly lose and alleging poll irregularities. The BJP is sharply criticizing Mamata Banerjee for refusing to resign despite her party's massive defeat, accusing her of having no respect for democracy. But constitutionally, you must note, the Chief Minister must enjoy the confidence of the State Assembly. As per convention, a Chief Minister who has lost majority should resign. In fact, under Article 164, Section 1, the Chief Minister holds office during the Governor's pleasure. If the defeated Chief Minister refuses to step down, the Governor can intervene, dismiss the Chief Minister and the Council of Ministers too.
2: No, not that. Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. I went inside for few minutes. They kicked me in my belly. They kicked me in my backside. And you cannot imagine what happened, because that time CCTV was off. They just thrown me out from the counting station. I am now free bird. I gave full life for service. Now I am free bird. So, I have to do some work. That I will manage to do it.
3: ना CCTV कैमरा कभी ऑफ था, और जो है DO से मैंने पूरी बात करी है, कहीं भी ऐसा नहीं हो कि किसी ने किसी को लात घूंसे मारे हैं, ऐसा कहीं होता ही नहीं है किसी कैंडिडेट के साथ. होता है तो कंप्लेंट भी होती है, कंप्लेंट होती है फिर FIR होती है. ना कोई कंप्लेंट आई है, ना कोई FIR आई है, ना ऐसा कुछ हुआ है. DO ने खुद मुझे बताया है.
4: ममता जी ने साफ बताया है कि जिस तरीके से चुनाव में लूट मचाया गया है, हम हारे नहीं है, पर जिस तरीके से लूट के हराया गया, मैं आपको मतलब सुबह से मैं ऐसे 100 कैंडिडेट से बात कर चुका हूं जो कह रहे हैं कि 17C फॉर्म, और ये मैं पहले भी कहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि EVM, जो EVM में वोट होता है वो शायद ना मैनिपुलेट हो, लेकिन EVMs कैन बी रिप्लेस्ड. तो बहुत जगह से हमारे पास फीडबैक आया है, और ये रिटर्निंग ऑफिसर को काउंटिंग वाले दिन पे जमा भी दिया गया है कि जिस EVM पे वोट हुआ है, जब उसको काउंटिंग टेबल पे मैच कर रहा है तो सीरियल नंबर 17C के साथ मैच ही नहीं कर रहा है.
5: Last few months, still the election conduct of code of conduct is still there. So who is running the government? Chief Secretary, Election Commission is whatever the direction is given. That direction the Chief Secretary is doing. Therefore, last 3 months she is not working as a Chief Minister. Therefore, what is the question of resignation?
6: सर, जब हम खड़गपुर पे मिले थे फेज वन के पोलिंग के दिन, आपने मुझे बोला था कि खेला शेष होबे, अब आप क्या कहना चाहेंगे?
7: हाँ, खेला तो TMC ने शुरू की थी, लोगों ने 15 साल उनको दिया खेलने के लिए, खेला होबे, लोग देखते रह गए कब खेला होबे. अब खेला खत्म हो गया है, जनता ने खत्म किया है, खेल नहीं पाए लोग, 15 साल बर्बाद किया, भ्रष्टाचार, खून, हिंसा और परिवारवाद, लूटपाट में चला गया. लोग डर डर के जिए, लोग मुक्ति चाह रहे थे, चुनाव कमीशन ने वो रास्ता दिया लोगों ने, और बदली कर दी सरकार की, और नया सरकार की उम्मीद है, मोदी जी का ऊपर पूरा भरोसा है. माननीय प्रधानमंत्री बोल के गए थे 5 साल हमको दे दीजिए, हम बंगाल को सुधार देंगे, लोगों ने उन पर भरोसा रखा.
8: इतना दिन संविधान के हिसाब से मुख्यमंत्री का पद में था, तो संविधान तो सबसे अच्छा उसको मालूम होना चाहिए कि संविधान में कैसा होते हैं. ऐसा तो घर नहीं है जो जैसा बोलेंगे ऐसा होगा.
9: बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी जिस प्रकार की

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल। वी आर विथ यू।
6: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
7: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ। भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
8: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
9: ओडिशा का है। रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
10: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक the confidence of industry.
11: The people of Kerala understood the real politics of CPM and left the Democratic Front.
12: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
13: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
14: The results with the BJP winning more than 200 seats clearly answer those questions. Our teams on the ground, in the studios, in the newsroom, we keep tracking every twist. We try to stay away from the noise, try to use the election analytics to bring the coverage together for you. 90% voting is not common. That's 140 elections with less than 70%. Truvendu Adhikari leading at this moment. 5 states, 824 assembly seats, an election that felt more like a war.
15: Again going to shift focus to West Bengal, bring in our colleagues from the ground as well.
14: We've got breaking news just coming in.
16: Kanchan Gupta to wear this morning. Green was not one of them. Kanchanda, what's going on here?
17: Khela ho be.
18: Hello, Moto.
19: Motorola, India's leading AI smartphone brand. Motorola Signature, India's number one camera phone. Grab Motorola Signature today.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आके और मसाला।
5: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
6: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
7: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
8: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
9: ओडिशा का है। महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
10: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
11: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट।
12: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
13: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
14: But breaking news, the Congress party now appears to be moving from political signaling to actual formal political action in Tamil Nadu. Sources have informed us that Girish Chodankar, the Congress leader in charge of Tamil Nadu, is arriving in Chennai to formally extend support to

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
6: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
7: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
8: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
9: ओडिशा का है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
10: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक the confidence of industry.
11: The people of Kerala understood the real politics of CPM and left the Democratic Front.
12: And that kind of victory is truly astonishing, and I do believe it marks a return of the Congress

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: भरोसा ऑन मोदी जी एंड वी आर विथ यू।
2: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
3: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
4: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है?
5: Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, everyday.
1: भरोसा ऑन मोदी जी, an extraordinary management.
6: Welcome back. India and Vietnam today inked several MOUs in the fields of digital technology, rare earths, medical products, regulation, public sector audit, digital payment system and culture and tourism. The agreements were signed after talks between Prime Minister Narendra Modi and the President of Vietnam, who is in New Delhi this afternoon. During the talks, both leaders held wide-ranging discussions across the spectrum of bilateral relations, as well as on regional and global issues of mutual interest. Our Prime Minister said President Tho Lam's first state visit to India after being elected as the President of Vietnam within a month shows how much priority he gives to India-Vietnam relations.
7: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। भारत के एग्रीकल्चर, फिशरीज और एनिमल प्रोडक्ट्स का भी वियतनाम तक एक्सपोर्ट और सुगम होने जा रहा है।
8: Mr. Prime Minister and I have had a very successful discussion. We agreed to continue to further deepen political trust, step up high-level engagement, and increase the effectiveness of existing cooperation mechanisms. Second, we will elevate defense and security cooperation to become a strategic pillar to contribute to strengthening an environment of peace and stability. Third, we will bring about a stronger change in economic cooperation, trade cooperation, and investment cooperation through value chain connectivity, removing barriers, and expanding market access. Fourth, science, technology, innovation, and digital transformation will be a new driver for cooperation, opening up new areas, bringing about high value added. Fifth, we would strengthen people-to-people ties, cultural ties, educational relationship, and religious connection to bring about a strong social foundation for bilateral.
6: With that, time for us to slip into a short break. Coming up on the other side, we'll get you all the latest developments in Tamil Nadu as Vijay meets with the governor. Stay tuned.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
4: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेश से घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी पटिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
5: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री।
6: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
7: ओडिशा का है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
8: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
9: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
10: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आप्योर मसाला।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, जिंदल साथी सील साथी रे।

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आर्थर मसाला।
3: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
4: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
5: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
6: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
7: ओडिशा का है, जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
8: I think it will be good to bring back the confidence of industry.
9: The people of Kerala understood the real politics of CPM and I left the Democratic Front.
10: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
11: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
3: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
4: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
5: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
6: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
7: ओडिशा का है, जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
8: I think it will be good to bring back the confidence of industry.
9: The people of Kerala understood the real politics of CPM and I left the Democratic Front.
10: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.

0: to Adhikari has confirmed to us that assailants were tailing him. So this was a targeted strike. They were tailing him. They were pursuing his car for a bit. Also remember, they must have known that you have Chandranath in the car where he is sitting, because they fired not in the back seat. They fired directly at the very spot next to the driver, to the left of the driver, where Chandranath was sitting. How did they have this advanced intelligence? How did they know with such precision where he would be sitting? Because this wasn't done from a distance. They knew exactly which car it was. They knew exactly where he would be sitting. And then they drew up to the car, shot him, 4 rounds fired, 3 hit him straight. According to some reports, 1 in the neck, 1 in the chest, 1 in the head. And he collapsed at the spot. The driver then was taken to the hospital. The driver still injured, but Chandranath has passed away. Chandranath, who was the personal assistant of Shubhendu Adhikari, and you've heard Saurabh and Shreyasi talk about just how intrinsic he was to the entire life and the program of the man who is slated to be the chief minister of West Bengal. Saurabh wants to come in. Yes, Saurabh. Is this the right sequence?
1: Yes, you know, so what we are being given to understand now is that the car that in which Chandra was traveling in was somehow forced to slow down. And this is something that we are picking up, and because there was some vehicle in front of the car. Now, whether that was intentional, whether that was part of the plan, or whether that was just another car moving slowly is not yet clear. It'll be a part of an investigation. But what we are giving to understand, or at this point, what is being speculated, again, like I said, all of these details are just coming in. They're sketchy. So the police will have to piece them together and confirm those details. But what we're being given to understand is that the car in which Chandra was traveling in had to slow down because there was another car in front of that car. And that is something that is now being sort of said. And again, like I said, all of these details are just preliminary details. They'll have to be cross-checked, verified, and confirmed by the police. But what we're being given to understand is that Chandra's car had to slow down because there was a car in front. And that's when, the shooters took advantage. The car had to slow down. And then that's when they took aim and fired at the vehicle in which he was traveling in. So that's the latest that we're hearing as far as this incident is concerned.
0: Saurabh, that's very disturbing because it makes it seem that this whole plan was very, very elaborate. The fact that you not only know where the target is, which car he's traveling in, where he would be sitting, but there could be multiple vehicles which were involved in this targeted attack. You had one car possibly making him slow down, another bunch of assailants who I'm assuming would be on a two-wheeler given the ease with which they shot him, and they managed to get away. That is the bigger shocker, Saurabh.
1: That's right, absolutely. It's a huge shocker, and this is something that obviously this is not just someone. This is someone who's practically Shubhendu Adhikari's shadow, someone who always travels with Shubhendu Adhikari. At the end of the day, when his duty hours had ended, he was heading home. Shubhendu Adhikari, of course, was headed elsewhere. He was not in the vicinity of where the incident took place. But very, very shocking, because this is someone who's very close to Mr. Adhikari, and him being targeted like this, we don't know the motive yet, like we've been clarifying to our viewers, with that, sort of disclaimer that this is sketchy information, preliminary information that we are collecting from sources. So all of this will have to be verified by the police. But what we're being given to understand, and what it seems like from a preliminary glance, is that this was, like you mentioned, Padmaja, quite elaborate. If indeed this theory that is now being circulated is proven correct, that there was some car in front which was a result of why Chandra's car had to slow down. If all of this adds up, if all of this is pieced together and this is true, then this is quite a shocking incident. Not only is it a shocking incident, but quite an elaborate plan.
0: Absolutely. Just stay with me, Saurabh and Shreyasi, both. Let's listen again to what Shubhendu Adhikari's brother, Dibyendu Adhikari, told us just a while ago, not just about the plan, but also saying that he suspects that there are goons of the TMC behind it. Listen in. Dibyendu Adhikari is with us on the phone line. Dibyendu, can you tell us exactly what happened? Where did it happen?
2: निजाम पैलेस से शुभेंदु अधिकारी जी का कफीला निकल गया कंटाई के लिए, रेसिडेंस के लिए, उसके बाद वो निकला था, उसको देख के किया गया था कई दिन से। भवानीपुर जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में बढ़िया रोल प्ले किया था। आई एम एप्रिहेंडिंग दैट टीएमसी गुंस आर एक क्या है, मैं मांग करता हूँ कि अभी सीबीआई जांच का जांच दिया जाए और इनका सीएफएसएल से फॉरेंसिक लेवल से इनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और एम्स कल्याणी में इसको पोस्टमार्टम के लिए की भी बंदोबस्त करना चाहिए।
0: जी आप कह रहे हैं कि ये जो राजनीतिक राइवलरी है उसकी वजह से हुआ है, पर कहां पे हुआ है, किसने मारा है, कितने लोग थे, क्या मोटरसाइकिल पे आए थे, कुछ अभी डिटेल्स आपको पता चली?
2: भाई कार था, भाई स्कॉर्पियो कार था और ड्राइवर और दोनों आदमी था, वो वहां का रहने वाला है।
0: अभी अभी शुभेंदु जी किधर पे हैं?
2: मध्यमग्राम ऑन द स्पॉट अलोंग विद आवर स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर सुमित भट्टाचार्य।
0: Was Mr. Adhikari, was Shubhendu Adhikari also supposed to be in this car along with Chandranath?
2: No. Shubhendu Adhikari is not with his car.
0: नहीं, but क्या उनको इस गाड़ी में ही रहना था? क्या ये शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी है जिसमें चंद्रनाथ भी अमूमन उनके साथ चलते थे?
2: चंद्रनाथ इसका पीए है, शुभेंदु वो चंद्रनाथ उसका खुद का कार में था।
0: अच्छा, वो अलग गाड़ी में थे। क्या आपको अभी कुछ डिटेल्स पता चल रही हैं कि कितने लोग थे, क्या वो मोटरसाइकिल्स?
2: डिटेल नहीं पता चला है।
0: क्या वो गाड़ी का पीछा कर रहे थे?
2: हाँ, गाड़ी का पीछा कर रहे थे।
0: जो चंद्रनाथ हैं, वो क्या शुभेंदु जी से मिलने आ रहे थे?
2: नहीं, ऑफिस खत्म करके जब निजाम पैलेस से आ रहा था ऑन वे टू कोंटाई, चंद्रनाथ मूविंग टुवर्ड्स His residence at Madhyamgram.
0: वो कोंटाई आ रहे थे?
2: जी।
0: तो शुभेंदु जी को तो कोई खतरा नहीं है, उनको तो कोई आसपास नहीं थे ना, वो जहाँ पे अटैक हुआ है उसके आसपास तो नहीं थे वो?
2: जी।
0: जिस जगह पे हमला हुआ है उसके आसपास शुभेंदु अधिकारी तो नहीं थे क्या? आगे पीछे किसी गाड़ी में तो नहीं थे वो?
2: आसपास नहीं थे, आसपास नहीं।
0: क्या किसी तरीके की धमकी मिली थी पिछले कुछ दिनों में शुभेंदु जी को या फिर चंद्रनाथ?
2: आई एम नॉट एबल टू सेव यू मोर मैडम, काइंडली एक्सक्यूज मी, आई एम ऑन वे टू चंद्रनाथ रेसिडेंस।
0: ओके, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच मिस्टर शुभेंदु अधिकारी, दैट इज शुभेंदु अधिकारीज ब्रदर, ऑल्सो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
3: से चंद किलोमीटर की दूरी पर जो है वहां पर एक बिरयानी खरीदने की दुकान पर जो है उनकी गाड़ी रुक जाती है। रात को ये घटना हुआ है, इसके फौरन बाद जो है उनके गाड़ियों पर गोली दागी गई है। पुलिस के हवाले से जो हमें खबरें मिल पा रही है वो तीन गोलियां लगाया, उसके बाद फौरन उन्हें आनंद फरन में इसी अस्पताल में लाया गया है। और फिलहाल जो है हम जो बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। भीड़ जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं और तमाम जो समर्थक है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक जो हमें बताया नहीं गया है कि ये दरअसल कौन साजिश रचा है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ये बिल्कुल साजिश के तहत ये घटना घटाई गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये दरअसल जो बताया जा रहा था कि आज जब शाम को हमारा मुलाकात हुआ था शुभेंदु अधिकारी से, जब इलेक्शन कमीशन के दफ्तर वो पहुंचे हुए थे, तब उन्होंने ये कहा था प्रेस वार्ता के दौरान कि पार्टी की तरफ से ये निर्देश तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को पहुंच गया है और चीफ इलेक्शन कमीशन से भी मिलकर उन्होंने ये वायदा किया है जिस तरीके से पोस्टल वायलेंस या फिर हिंसा की खबरें आ रही है उस पर रोक लगाई जाएगी। सुमित भट्टाचार्य आज दोपहर को स्टेट सेक्रेटरी नवान्नों में पहुंचकर जब उन्होंने बात की होम सेक्रेटरी से, उस बैठक के दौरान भी ये निर्देश दिया गया था कि जो है कि इस पर सख्ती की जाएगी, कोई कोठाई नहीं दिखा जाएगा कि बंगाल में हिंसा हो। इससे शुभेंदु अधिकारी जो कटावर देता है चुनाव के नतीजे के बाद जो है उनकी ही पर्सनल असिस्टेंट के ऊपर गोली चल जाती है। हालांकि इसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है, कौन है वो लोग, देखिए मैं यहाँ पर अपना तफरी का माहौल का सीधा प्रशासन हमारा एनडीटीवी के दर्शकों तक पहुंचा रहा हूँ। ये जैसे उन्माद की भीड़ आप जो है अस्पताल के अंदर दाखिल हो रहे हैं, बिल्कुल बेकाबू होते जो लोग हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अंदर जा रहे हैं हम समर्थक जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बताऊँ की अभी तक जो है अस्पताल के अंदर है, आसपास का मंजर जो है बिल्कुल बेकाबू है और आसपास हम देख सकते हैं कि भारी बलों की तैनाती भी कर दी गई है। आनंद फरंग में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बारे में हमें पुख्ता जानकारी नहीं है कि दरअसल ये हादसा है, ये अपराध को अंजाम किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि एक साजिश के तहत की गई है, दरअसल अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जितना जानकारी मैं ले पाया हूँ आनंद फरंग में, बारासा जो नॉर्थ 24 परगना का सदर शहर है वहां पर एक सांगठनिक काम पे शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रॉथ हो गए थे, काफिले से वो जब लौट रहे थे तब उनके ऊपर जब एक दुकान पे उनकी गाड़ी रुक जाती है तो आरोप है कि पीछे से कुछ लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे, इस दौरान जो है उन पर गाड़ी पर गोली दागी गई है, शीशा चढ़ा हुआ था और उसके अंदर से गोली दागी गई है। मैं यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल के बीच लगातार हम देख सकते हैं कि पुलिस की आवाजाही बनी हुई है, केंद्रीय बल की तैनाती हो गई है, आसपास के वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। इस वक्त मैं आपको मौजूदा मंजर बता दूं, अंदर शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए हैं, दरअसल वो काफी के लिए रवाना हो गए थे घर के लिए, आज चुनाव आयोग में वो पहुंचे थे और इस बंगाल में किसी भी तरीके से हिंसक वारदात ना हो इस पर सख्ती से पेश आया जाए, ऐसा ही बैठक जो सरकार बनने जा रहा था उनके एक मुखिया के तरफ से चुनाव आयोग तक पहुंचा गया था। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी जो होम सेकेंडरी उसके बैठक के दौरान भी सुमित भट्टाचार्य ने इस बात को स्पष्ट की थी, इसके बाद जो है इतनी बड़ी घटना, मैं आपको बताऊं चंद्रनाथ को हम अब खूबी जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से उनसे हमारा परिचय था क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक करियर खासकर जब से वो विपक्ष के नेता बने वो तो इस कट्टावर नेता के बिल्कुल साये की तरह उनके साथ था, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो उनके बाहर। और मुझे याद आ रहा है कि जिस दिन भवानीपुर में बिल्कुल लास्ट जब प्रचार हुआ था उस दिन मेरे साथ चंद्रनाथ का मुलाकात हुआ, जब तमाम कैंपेन खत्म होने के बाद शुभेंदु अधिकारी जब भवानीपुर के एक दुर्गा मंदिर में पहुंचे थे तो हम लोगों ने उनसे बात भी की थी, तो उसके बाद जो है इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। और जब ये एक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए ये बड़ा मसला है, हम समझ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के जो पर्सनल असिस्टेंट है उनके ऊपर इस तरीके से हमला कर दी गई है। मैं लगातार यहाँ पर जो है भीड़ और जो विरोध प्रदर्शन का दौर मैं देख सकता हूँ बढ़ रहा है, खासकर उत्साहित समर्थक वो काबू नहीं हो रहा है, लगातार मांगे मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग नेताओं से हमारा अभी तक बात हुआ है वो सीधे आरोप कर रहे हैं कि साजिश के तहत ये इस अपराध को अंजाम दिया गया है। आनंद फरंग में जहाँ पर हम है यहाँ से घटना स्थल कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है वो कोलकाता की तरफ घटना हो जाता है, लेकिन इसके बारे में पुख्ता जानकारी तभी हो पाएगी जब शुभेंदु अधिकारी अस्पताल के अंदर से बाहर आएंगे। दरअसल ये मंजर देखिए पूरा चुनाव जो दौर है बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा, मेरा आज चीफ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के तमाम आधिकारिक से शाम को बातें हो रही थी, प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ये भी बताया था कि इस बात पर तमाम कोशिश की जा रही है कि फिर से तनाव का स्थिति ना हो। इस बीच इतना बड़ा घटना हो जा रहा है कि एक सत्तारूढ़ पार्टी जो सत्ता पलट जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी जब उन्होंने इसका बागडोर संभाला है, सब समारोह 9 तारीख होना है, इस बीच मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगा उधर रनर जो है मुख्यमंत्री के दौर पर नौ शुभेंदु अधिकारी है उनमें से अव्वल आगे है, उनके ही पर्सनल असिस्टेंट के साथ इस तरीके से उसको खून कर दिया जाता है, वो भी कोलकाता शहर के बिल्कुल नजदीक और मध्यम ग्राम के ऐसे हरे बाजार इलाके में हाईवे जो नेशनल हाईवे है उसके ऊपर गाड़ी जब रुकी तो अंधाधुंध गोली चलाई गई है। लेकिन तस्वीर हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि गाड़ी के सामने वाले सीट में वो बैठे हुए थे, उसी गाड़ी पर अंधाधुंध गोली चलाई गई है। अभी तक जो जानकारी हमें मिल पाई है 3 राउंड गोलियां दागा गया है। गाड़ी वहां पर रुका हुआ था, शीशा चरा हुआ था, चंद्रनाथ बिल्कुल आगे बैठे हुए थे, गाड़ी के बिल्कुल पास से साइड से जो है गोली दागी गई है। उसके फौरन बाद उसे यहाँ से नजदीकी जो अस्पताल है जहाँ से हम सीधा प्रसारण कर रहे हैं वहां पर उन्हें लाया गया और मौके पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। और ये खबर मिलने के बाद शुभेंदु अधिकारी खुद साथी की तरफ हो रखना मुझे
0: All right, that is Ritik Mandal of NDTV live at the spot where the body of Chandranath has been brought. I will come to you, Ritik, in just a second. Give me 2 minutes because we've got BJP leader and candidate also, somebody who was a candidate in the just concluded election, Shatrupa, joining us on the phone line. Shatrupa, what more can you tell us? Any more details that you are getting of the nature of this attack?
4: No, Padmija, it's extremely sad and very shocking. That Chandranath, a very quiet, friendly, nice boy who was Shivendra's PA, he's been shot dead. I believe somebody shot him from point blank and there were three shots fired, two of which hit him and probably even the driver is injured. He's been brought dead to the Madhyam Gram Hospital now. Shivendra has reached, Shukantoda has reached, and I believe... Arjun Singh has also reached there. But it's a very, very sad and shocking incident because Chandranath was somebody who you couldn't be angry with. I mean, you know, he was such a cheerful boy. One had to, generally most, some of us have access to Shubhendra directly, but in case you needed to know Shubhendra's schedule or his movements, direct movements, Chandranath was the guy to call and he would always respond with a smile and a cheer in his voice. It's very shocking that somebody would want to, you know, this is one, you and I were in fact discussing on one show that there's been absolutely no violence in this entire election period. But Trinamool, I presume it is Trinamool, we don't know as yet. I mean, probably it is irresponsible of me to say this, but it has to be. I mean, who else would try to harm Shubhendra at this juncture? Where, you know, day after tomorrow, the swearing-in is going to happen. Tonight, as we are speaking, probably there is a meeting of the elected MLAs right now.
0: Yes.
4: And they're deciding the leader of the Vidhan Sabha affairs, legislative affairs. CM will be decided and declared tomorrow. So this entire peaceful, exciting times that we are now has been just smeared with this one very, very, very sad and shocking incident.
0: Just terrible, terrible. The loss of a human life after what was hailed as a largely peaceful, bloodless election. No political violence. So you've also got now Union Minister Shukanta Majumdar, who's an MP from Balurghat in West Bengal, also reaching the hospital. Shivendu Adhikari is there. Shamik Bhattacharya is going there, who's the state president of the BJP. We already had the Biendu Adhikari saying earlier that the TMC is behind this attack. Now, of course, the finger pointing has started. Another member of the BJP, Devdas Mandal, BJP MLA Devdas Mandal has now reacted, saying that the TMC is involved and the shooters will soon be tracked down. So names being taken now, as Shatrupa was also just saying, that in a process that was not marred by violence, is there an effort to try and instigate people, to try and vitiate the atmosphere at a time when you've got, remember, on the night before the swearing-in is to take place, VIPs are going to be touching down in Kolkata. The Home Minister is expected there tomorrow. Subsequently, you've got all the NDA chief ministers. The Prime Minister himself is going to be in Kolkata for the swearing-in of the next chief minister. And at such a time, is there an effort to try and muddy waters, to try and provoke people? But one must say on NDTV, we are only reporting the facts and reporting it very, very cautiously. It's still far, far too early to find out who is behind this. So, there will be politics. Everyone must stay calm. Calm must prevail. Sane minds must prevail. Let's listen in to what the BJP MLA said.
5: देखिए तृणमूल ने जो किया है उसको अभी भी लग रहा है उसका सरकार है, तो तृणमूल ने जो किया है, जो कांड किया है, जे एक निरीह एकदम इनोसेंट जिसको कातिल किया है उसको कातिल किया है, लेकिन वो शहीद हुआ है, पार्टी के लिए शहीद हुआ है, तो तृणमूल को क्या लगता है? तृणमूल जो किया है इस कारण उसको भगतना ही पड़ेगा, अब निश्चिंत रहिए उसको भगतना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, पाताल में रहे उसको ढूंढ के लाएंगे।
0: Alright, there is going to be a lot of finger pointing, but Shreyasi, at this point, the forces need to be brought in across the state, because if somebody is trying to vitiate the atmosphere to provoke people, that should be nipped in the bud. Are you hearing of a greater force deployment across Bengal?
6: Well, of course, there was a high-level meeting that was held yesterday itself after sporadic instances of post-poll violence was pouring in. Almost at midnight, the CEO, along with DGP, CRPF, CISF, all were holding this meeting in Kolkata. I think you lost. Hello?
0: No, no, go on. We can hear you, Shreyasi. Go on.
6: Okay. All right. So, yes. So, after the sporadic instance of post-poll violence was reported from across West Bengal, the CEO yesterday held a meeting very late in the night. The DGP, the CS, the DGP of various central paramilitary forces were also present, and strict instructions were given towards zero tolerance towards post-poll violence. Today, the DGP of West Bengal has addressed the media and has elaborated on the FIRs, on the arrests and all the measures that have been put on ground. The CEO's office has told us about the deployment of central paramilitary forces. We do know here in Kolkata as well, the companies that are now patrolling on motorbikes as well. But this incident is coming in from Madhyamgram. This shocking murder has taken place off the national highway. And what we are picking up, of course, you can see those bullet marks on the left window, and a senior leadership have all reached the hospital. More details are awaited from the police. An official statement is awaited from the police. But of course, as investigations begin in this particular case, apart from the fact that this points finger at the deteriorating law and order situation, and also raising very, very serious questions on if...
0: Trinamool Congress. Here's what the Trinamool Congress has said. We strongly condemn the brutal murder of Chandranath Rath in Madhyamgram tonight, along with the killing of three other TMC workers and incidents of post-poll violence allegedly carried out by BJP-backed miscreants over the last 3 days, despite the model code of conduct being in place. We demand the strongest possible action in this matter, including a court-monitored CBI investigation, so that those responsible are identified and brought to justice without delay. Violence and political killings have no place in a democracy, and the guilty must be held accountable at the earliest. That's the first statement that is coming in from the Trinamool Congress, where they are underlining, Shreyasi, that Chandranath Rath has been killed today, but they say that three other TMC workers have also been killed in incidents of post-poll violence allegedly carried out by BJP-backed miscreants over the last 3 days. So the TMC is saying, that is Chukanto Majumdar. So, quite a huge group of people has now assembled outside the hospital. People quite worked up. There is a crush of media, of locals, one assumes of BJP workers, who have all rushed to the hospital. Shivendu Adhikari already there. Shamik Bhattacharya has headed there. Divindu Adhikari told us he's also going there. And that is Chukanto Majumdar, who can be seen entering the hospital. But Shreyasi there, the TMC, coming up with the condemnation at a time when they are being accused by the BJP of engineering this murder. All right. Back with us from outside the hospital. Yes, it's over to you, Hritik.
3: Well, definitely, let me cut across to the visual what exactly is happening over here. As you can see, the movements of the central forces and police at this doorstep of this particular private hospital. Let me tell you what exactly unfolded. Sometimes the personal assistant of Shubhendu Adhikari, he was headed to Kolkata from North Chobbish Parganas Barashat, And there are very serious allegations leveled by Bharatiya Janata Party that the personal assistant of Subhadra Adhikari, that is Chandra has been killed. He has been shot dead. Actually, 3 bullets have been fired at him. He was traveling in a vehicle. The vehicle stopped at a biryani.

0: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
1: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Harisha Sehgal.
2: दिव्येंदु अधिकारी इज विद अस ऑन द फोन लाइन. दिव्येंदु दा, क्या बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ, घटना कहां हुई, कैसे हुई?
3: भोजन निजाम पैलेस से शुभेंदु अधिकारी जी का कफिला निकल गया कंटाई के लिए, रेसिडेंस के लिए. उसके बाद वो निकला था, उसको रेक किया गया था कई दिन से. भवानीपुर जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में बढ़िया रोल प्ले किया था. आई एम एप्रिहेंडिंग दैट टीएमसी गोन सर एक क्या है. मैं ये मांग करता हूँ कि अभी सीबीआई जांच का जांच दिया जाए और इनका सीएफएसएल से फॉरेंसिक लेवल से इनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. और एम्स कल्याणी में इसको पोस्टमार्टम के लिए भी बंदोबस्त करना चाहिए.
2: जी, आप कह रहे हैं कि ये जो राजनीतिक राइवलरी है उसकी वजह से हुआ है, पर कहां पे हुआ है, किसने मारा है, कितने लोग थे, क्या मोटरसाइकिल पे आए थे, कुछ अभी डिटेल्स आपको पता चली है?
3: भाई कार था, भाई स्कॉर्पियो कार था, और ड्राइवर और दोनों आदमी था, वो वहां का रहने वाला है.
2: अभी अभी शुभेंदु जी किधर पे है?
3: ऑन द स्पॉट अलोंग विद आवर स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर सुमित भट्टाचार्य.
2: Was Shubhendu Adhikari also supposed to be in this car along with Chandranath?
3: No. Shubhendu Adhikari is not with his car.
2: नहीं, but क्या उनको इस गाड़ी में ही रहना था? क्या ये शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी है जिसमें चंद्रनाथ भी अमूमन उनके साथ चलते थे?
3: चंद्रनाथ इसका पीए है. शुभेंदु वो चंद्रनाथ उसका खुद का कार में था.
2: अच्छा, वो अलग गाड़ी में थे. क्या आपको अभी कुछ डिटेल्स पता चल रही है कि कितने लोग थे, क्या वो मोटरसाइकिल?
3: डिटेल नहीं पता चला है. वो
2: क्या वो गाड़ी का पीछा कर रहे थे?
3: हाँ, गाड़ी का पीछा कर रहे थे.
2: जो चंद्रनाथ है वो क्या शुभेंदु जी से मिलने आ रहे थे?
3: नहीं, ऑफिस खत्म करके जब निजाम पैलेस से आ रहा था ऑन वे टू कोंटाई, चंद्रनाथ मूविंग टुवर्ड्स His residence is Madhyamgram.
2: वो कोंटाई आ रहे थे
3: जी.
2: तो शुभेंदु जी को तो कोई खतरा नहीं है, उनको तो कोई आसपास नहीं थे ना, वो जहाँ पे अटैक हुआ है उसके आसपास तो नहीं थे वो
3: जी?
2: जिस जगह पे हमला हुआ है उसके आसपास शुभेंदु अधिकारी तो नहीं थे क्या? आगे पीछे किसी गाड़ी में तो नहीं थे वो?
3: आसपास नहीं थे, आसपास नहीं.
2: क्या किसी तरीके की धमकी मिली थी पिछले कुछ दिनों में शुभेंदु जी को या फिर चंद्रनाथ को?
3: आई एम नॉट एबल टू से यू मोर मैडम.

0: रोक लगाई जाएगी। सुमित भट्टाचार्य आज दोपहर को स्टेट सेक्रेटरियट गवर्नर में पहुंचकर जब उन्होंने बात की होम सेक्रेटरी से, उस बैठक के दौरान भी ये निर्देश दिया गया था कि जो है कि इस पर सख्ती की जाएगी, कोई कोठाई नहीं दिखा जाएगा कि बंगाल में हिंसा हो। इससे शुभेंदु अधिकारी जो कटावर नेता है, चुनाव के नतीजे के बाद जो है उनकी ही पर्सनल असिस्टेंट के ऊपर गोली चल जाती है। हालांकि इसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है, कौन है वो लोग, देखिए मैं यहाँ पर अपने तफरी का माहौल है, सीधा प्रशासन हमारा एनडीटीवी के दर्शकों तक पहुंचा रहा हूँ। ये जैसे उन्मादी फिर आप जो है अस्पताल के अंदर दाखिल हो रहे हैं, बिल्कुल बेकाबू होते जो लोग हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अंदर जा रहे हैं, हम समर्थक जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बताऊँ की अभी तक जो है अस्पताल के अंदर है, आसपास का मंजर जो है बिल्कुल बेकाबू है और आसपास हम देख सकते हैं कि भारी बलों की तैनाती भी कर दी गई है। आनंद फरन में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बारे में हमें पुख्ता जानकारी नहीं है कि दरअसल ये हादसा है, ये अपराध अंजाम किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि एक साजिश के तहत की गई है, दरअसल अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जितना जानकारी मैं ले पाया हूं आनंद फारम में, बारासा जो नॉर्थ 24 परगना का सदर शहर है, वहां पर एक सांगठनिक काम से शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रॉथ वो गए थे, काफिलों से वो जब लौट रहे थे तब उनके ऊपर जब एक दुकान पे उनकी गाड़ी रुक जाती है तो आरोप है कि पीछे से कुछ लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे, इस दौरान जो है उन पर गाड़ी पर गोली दागी गई है, शीशा चढ़ा हुआ था और उसके अंदर से गोली दागी गई है। मैं यहाँ पर अकड़ सफरी का माहौल के बीच लगातार हम देख सकते हैं कि पुलिस की आवाजाही बनी हुई है, केंद्रीय बल की तैनाती हो गई है, आसपास के वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। इस वक्त मैं आपको मौजूदा मंजर बता दूं, अंदर शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए हैं, दरअसल वो काफी के लिए रवाना हो गए थे घर के लिए, आज चुनाव आयोग में वो पहुंचे थे और इस बंगाल में किसी भी तरीके से हिंसक वारदात ना हो इस पर सख्ती से पेश आया जाए, ऐसा ही बैठक जो सरकार बनने जा रहा था उनके एक मुखिया के तरफ से चुनाव आयोग तक पहुंचा गया था। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी जो होम सेकेंडरी उसके बैठक के दौरान भी सुमित भट्टाचार्य ने बात को स्पष्ट की थी। इसके बाद जो है इतनी बड़ी घटना, मैं आपको बताऊं चंद्रनाथ को हम अब खूबी जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से उनसे हमारा परिचय था, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक करियर खासकर जब से वो विपक्ष के नेता बने वो तो इस कट्टावर नेता के बिल्कुल साये की तरह उनके साथ था, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो उनके बाहर। और मुझे याद आ रहा है कि जिस दिन भवानीपुर में बिल्कुल लास्ट जब प्रचार हुआ था उस दिन मेरे साथ चंद्रनाथ का मुलाकात हुआ, जब तमाम कैंपेन खत्म होने के बाद शुभेंदु अधिकारी जब भवानीपुर के एक दुर्गा मंदिर में पहुंचे थे तो हम लोगों ने उनसे बात भी की थी, तो उसके बाद जो है इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। और जब ये एक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए ये बड़ा मसला है, हम समझ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के जो जो पर्सनल असिस्टेंट है उनके ऊपर इस तरीके से हमला कर दी गई है। मैं लगातार यहाँ पर जो है भीड़ और जो विरोध प्रदर्शन का दौर मैं देख सकता हूँ बढ़ रहा है, खासकर उस साये समर्थक वो काबू नहीं हो रहा है, लगातार मांगे उठ रही है। मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग नेताओं से हमारा अभी तक बात हुआ है वो सीधे आरोप कर रहे हैं कि साजिश के तहत ये इस अपराध को अंजाम दिया गया है। आनंद फरन में जहाँ पर हम है यहाँ से घटना स्थल कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है वो कोलकाता की तरफ घटना हो जाता है, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी तभी हो पाएगी जब शुभेंदु अधिकारी अस्पताल के अंदर से बाहर आएंगे। दरअसल ये मंजर देखिए पूरा चुनाव जो दौर है बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा, मेरा आज चीफ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के तमाम आधिकारिक से शाम को बातें हो रही थी, प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ये भी बताया था कि इस बात पर तमाम कोशिश की जा रही है कि फिर से तनाव का स्थिति ना हो, इस बीच इतना बड़ा घटना हो जा रहा है कि एक सत्तारूढ़ पार्टी जो सत्ता पलट जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी जब उन्होंने इसका बागडोर संभाला है, सब समारोह 9 तारीख होना है। इस बीच मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगा, उधर रनर जो है मुख्यमंत्री के दौर पर 9 शुभेंदु अधिकारी है, उनमें से अव्वल आगे है, उनके ही पर्सनल असिस्टेंट के साथ इस तरीके से उसको खून कर दिया जाता है, वो भी कोलकाता शहर के बिल्कुल नजदीक और मध्यम ग्राम के ऐसे भरे बाजार इलाके में, हाईवे जो नेशनल हाईवे है उसके ऊपर गाड़ी जब रुकी तो अंधाधुंध गोली चलाई गई है। लेकिन तस्वीर हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि उस गाड़ी के सामने वाले सीट में वो बैठे हुए थे, उसी गाड़ी पर अंधाधुंध गोली चलाई गई है। अभी तक जो जानकारी हमें मिल पाई है 3 राउंड गोलियां दागा गया है, गाड़ी वहां पर रुका हुआ था, शीशा जरा हुआ था, चंद्रनाथ बिल्कुल आगे बैठे हुए थे, गाड़ी के बिल्कुल पास से साइड से जो है गोली दागी गई है, उसके फौरन बाद उसे यहाँ से नजदीकी जो अस्पताल है जहां से हम सीधा प्रसारण कर रहे हैं वहां पर उन्हें लाया गया और मौके पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। और ये खबर मिलने के बाद शुभेंदु अधिकारी खुद साथी की तरफ हो रहा है।
1: All right, that is Ritik Mandal of NDTV live at the spot where the body of Chandranath has been brought. I will come to you, Ritik, in just a second. Give me 2 minutes because we've got BJP leader and candidate, also somebody who was a candidate in the just concluded election, Shatrupa, joining us on the phone line. Shatrupa, what more can you tell us? Any more details that you are getting of the nature of this attack?
2: No, Padmija, it's extremely sad and very shocking. That Chandranath, a very quiet, friendly, nice boy who was Shivendra Das PA, he's been shot dead. I believe somebody shot him from point blank, and there were three shots fired, two of which hit him, and probably even the driver is injured. He's been brought dead to the Madhyam Gram Hospital now. Shivendra Da has reached, Shukanto Da has reached, and I believe. Arjun Singh has also reached there. But it's a very, very sad and shocking incident because Chandranath was somebody who you couldn't be angry with. I mean, you know, he was such a cheerful boy. One had to, generally most, some of us have access to Shubhendu Da directly, but in case you needed to know Shubhendu Da's schedule or his movements, direct movements, Chandranath was the guy to call and he would always respond with a smile and a cheer in his voice. It's very shocking that somebody would want to, you know, this is one, you and I were in fact discussing on one show that there's been absolutely no violence in this entire election period. But Trinamool, I presume it is Trinamool, we don't know as yet. I mean, probably it is irresponsible of me to say this, but it has to be. I mean, who else would try to harm Shubhendu Da at this juncture? Where, day after tomorrow, the swearing-in is going to happen. Tonight, as we are speaking, probably there is a meeting of the elected MLAs right now.
1: Yes.
2: And they are deciding the leader of the Vidhan Sabha affairs, legislative affairs. CM will be decided and declared tomorrow. So this entire peaceful, exciting times that we are now has been just smeared with this one very, very, very sad and shocking incident.
1: Just terrible, terrible. The loss of a human life after what was hailed as a largely peaceful, bloodless election. No political violence. So you've also got now Union Minister Shukanto Majumdar, who's an MP from Balurghat in West Bengal, also reaching the hospital. Shivendu Adhikari is there. Shamik Bhattacharya is going there, who's the state president of the BJP. We already had the Biendu Adhikari saying earlier that the TMC is behind this attack. Now, of course, the finger pointing has started. Another member of the BJP, Devdas Mandal, BJP MLA Devdas Mandal has now reacted, saying that the TMC is involved and the shooters will soon be tracked down. So names being taken now, as Shatrupa was also just saying, that in a process that was not marred by violence, is there an effort to try and instigate people to try and vitiate the atmosphere at a time when you've got, remember, on the night before the swearing-in is to take place, VIPs are going to be touching down in Kolkata. The Home Minister is expected there tomorrow. Subsequently, you've got all the NDA chief ministers. The Prime Minister himself is going to be in Kolkata for the swearing-in of the next chief minister. And at such a time, is there an effort to try and muddy waters, to try and provoke people? But one must say on NDTV, we are only reporting the facts and reporting it very, very cautiously. It's still far, far too early to find out who is behind this. So there will be politics. Everyone must stay calm. Calm must prevail. Sane minds must prevail. Let's listen in to what the BJP MLA said.
3: देखिए तृणमूल ने जो किया है उसको अभी भी लग रहा है उसका सरकार है. तो तृणमूल ने जो किया है, जो कांड किया है, जे एक निरीह एकदम इनोसेंट जिसको कातिल किया है, उसको कातिल किया, लेकिन वो शहीद हुआ है, पार्टी के लिए शहीद हुआ है. तो तृणमूल को क्या लगता है? तृणमूल जो किया है इस कारण उसको भुगतना ही पड़ेगा. अब निश्चिंत रहिए, उसको भुगतना ही पड़ेगा. चाहे कोई भी हो, पाताल में रहे, उसको ढूंढ के लाएंगे.
4: What seems settled for me is unfinished business. So I
1: Mr. Ghosh, what are your reaction? Your first reaction to this horrific murder that is being reported from Madhyamgram today, Shuvindu Adhikari's PA shot dead at close range.
5: This is very, very bad incident. We strongly condemned. This is very, very bad incident. इसका पूरा झांझ होना चाहिए. पुलिस या कोर्ट मॉनिटर सीबीआई जो भी इसका पीछे हो, जो भी इसका पीछे हो, जिस लोग ये इसका हाथ है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और तुरंत आइडेंटिफाई करना चाहिए. भाजपा लीडर्स जो आरोप लगा रहा है, हम उसको सेंटिमेंट को समझ रहा है, वो पॉलिटिकली आरोप लगा रहा है, लेकिन टीएमसी अपने जो स्टेटमेंट है वो रिलीज कर चुका है. वी ऑल्सो स्ट्रॉन्गली कंडेम्ड. ऐसा होना नहीं चाहिए. अभी तो स्टेट इलेक्शन कमीशन और राष्ट्रपति जी या गवर्नर साहब का अंडर में है, तो पूरा पुलिस या कोर्ट मॉनिटर सीबीआई जो भी हो, जो लोग किया, क्यों किया, मोटिव क्या है, ये पूरा जो भी हो, आई रिपीट, जो भी हो उसका पकड़ना चाहिए.
1: आपको क्या लगता है क्या मोटिव है?
5: देखिए अभी बोलना मुश्किल है क्योंकि ये जस्ट हम लोग ये इंफॉर्मेशन आ चुका है. ये तो पुलिस डिटेल में बता सकता है. इसका साथ पॉलिटिक्स का कनेक्शन कितना है या कौन किया है, क्यों किया है, वो इंफॉर्मेशन के बिना इसके ऊपर कमेंट करना ठीक नहीं है. लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ. We strongly condemned this kind of incident.
1: जी, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि साफ साफ जो उंगली है वो आप पे उठाई जा रही है. दिव्येंदु अधिकारी हो या फिर दो जो विधायक हैं भाजपा के जिनसे हमने बात की है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि अब तृणमूल कांग्रेस अराजकता का माहौल बनाना चाहती है पश्चिम बंगाल के अंदर.
5: देखिए हम उसका सेंटिमेंट समझ सकते हैं. उसका एक कॉलिग के साथ ऐसा हुआ है. तो अभी ये इलेक्शन का जो माहौल चल रहा है, ये पॉलिटिकल ब्लेम, तो उसका सेंटिमेंट मैं समझ रहा हूँ. लेकिन तृणमूल कांग्रेस का एक स्पोक्स पर्सन होने के नाते मैं इतना बोल सकता हूँ, इसके साथ तृणमूल, इसके पीछे तृणमूल नहीं है. तृणमूल क्यों करेंगे? और तृणमूल का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी हमारा हैंडल से रिलीज कर दिया गया.
1: पर किसी को क्या फायदा हो सकता है कि एक यू नो टू किल एन इनोसेंट पर्सन, समबडी हु सो क्लोज टू शुवेंदु अधिकारी, हु वुड गेन फ्रॉम कैरिंग आउट सच अ मर्डर? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये कोई स्पर ऑफ द मोमेंट क्राइम ऑफ पैशन नहीं है. इफ आई एम श्योर यू हैव सीन बाय नाउ दैट इट ही वाज शॉट एट क्लोज रेंज, ही वाज टेल्ड बाय पीपल न्यू वेयर ही वाज सिटिंग, सो हिज कार वाज आइडेंटिफाइड. ये एक टारगेट किलिंग है.
5: Heard that the whole incident, but ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन किया, मोटिव क्या था, ये तुरंत पकड़ना चाहिए, पुलिस हो या कोर्ट मॉनिटर सीबीआई हो, जो भी हो, ये कौन लोग किया, क्यों किया? इलेक्शन तो हो चुका है, अभी तो न्यू गवर्नमेंट का ओथ टेकिंग का प्रोग्राम चल रहा है, इसके अंदर में ऐसा इंसिडेंट हम सोच भी नहीं सकते, ये कैसे हो रहा है, कौन लोग कर रहा है, क्यों किया है, बहुत बुरा किया है।
1: पर आपको अजीब नहीं लगता कि एट अ टाइम व्हेन देयर वाज सच हाइटेंड विजिल, जब सब कुछ पीसफुली निकल गया, तो ऐसा मर्डर हो जाए? कोई क्यों सुविंदु अधिकारी के पीए का मर्डर कोई क्यों करेगा?
5: ये तो यही तो क्वेश्चन है, जो इलेक्शन हो गया, अभी भाजपा का गवर्नमेंट का वोट चेकिंग का पूरा प्रोसेस चल रहा है, इस टाइम में उनका पीए को कौन मारेगा? और उसका मारा तो है जरूर, इतना बुरी तरह से मारा है, तो कौन मारा, उसका मोटिव क्या था, क्यों कर ये कर दिया? ये तो पूरा अभी तुरंत इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, नहीं तो ये तो एक मिसकम्युनिकेशन, एक सेंटिमेंटल आउटबर्स्ट हो जा रहा है भाजपा वालों को, कि पूरा ये प्रॉपरली तो तुरंत ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। जब इलेक्शन का मेन पार्ट खत्म हो गया है, न्यू गवर्नमेंट का ओथ टेकिंग का पूरा प्रोसेस चल रहा है, इस टाइम में इतनी बुरी तरह से ये ब्रूटल मर्डर, ये कैसे हो सकते है? हम लोग फिर से मैं कह रहा हूँ, अभी तो डिटेल इंफॉर्मेशन पूरा नहीं है, बहुत बुरा हुआ, और भाजपा लीडर्स का सेंटिमेंट भी हम समझ रहा हूँ, तो उसका कॉलिग का ऐसा ब्रूटल मर्डर हुआ, तो उसको तो इमोशनल आउटबर्स्ट, तो देखिए तो ह्यूमन है, होगा ही, लेकिन ये कौन लोग किया, क्यों किया, ये तो पूरा अभी एक पूरा इन्वेस्टिगेशन तुरंत होना चाहिए।
1: Because this is not just about one murder. Because पिछले दो दिनों में जितने भी अभी attacks हुए हैं, whatever attacks have taken place in West Bengal, a very startling claim was made by the BJP late this evening, where they said that Trinamool people are donning BJP uniform, or they are, you know, putting BJP safa, they are putting tilak, and they are carrying out these attacks. So they are accusing your party of deliberately trying to create violence and unrest in West Bengal.
5: ये हमारा नहीं, हमारा पास वीडियो भी है, वो देखिए, यहाँ पर हमारा वर्कर्स की भी मौत हो गया है, तीन आदमी का मौत हो गया है, मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, हमारा आदमी का भी मौत हुआ है, लेकिन ये जो हुआ है, जो जिस तरह मोडस ऑपरेंडी जो था, जो प्री प्लान्ड वे से जो हुआ, ये होना नहीं चाहिए था, बहुत बुरा हुआ, हर एक हमारा जो वर्कर्स का मौत हुआ है वो भी बहुत खराब है, लेकिन आज ये इस तरह वो शुभेंदु जी का जो सेक्रेटरी का मर्डर हुआ, वो कौन करेगा, मोटिव क्या है, उसका साथ डायरेक्ट पॉलिटिकल तो कोई क्लैश का बात नहीं था, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
1: ओके Absolutely, it is very, very important that this be found out and those people be dragged over the coals and be thrown into jail. Kunal Ghosh, though, says that there is absolutely no reason to suspect Trinamool Congress. They have also asked for a central probe to find out who is behind this. But again, we reiterate at NTV, we have only stuck to the facts. And at this point, while there are protests, there are allegations, calm minds must prevail. There should be no flare-up, because that is exactly what someone who has executed a murder of this kind would want. Thanks very much, Shriyasi, Ritik Mondal and Saurabh, for having stayed with us through this entire coverage of the biggest story of the day coming out of West Bengal. Thanks for watching. Taking a quick break.
6: Bharosa on Modi ji, an extraordinary management an assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
7: Illegal migrant, ये बांग्लादेश से घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार
8: भय से भर
9: Good evening, welcome to Left, Right and Centre. I'm Vishnu Shom. On the programme this evening, in a major political development in Tamil Nadu, the TVK chief and actor Vijay met the governor and formally stake claim to form the next government, but he doesn't appear to have the numbers, at least not yet. The TVK did emerge as the single largest party with 108 seats in the recently concluded assembly elections, breaking the decades-old DMK-ADMK duopoly. The Congress, for its part, announced its support, taking the TVK's tally closer to the 118-seat majority mark, while talks continue with other parties. With the governor remaining unconvinced at this stage about the numbers, making an oath of office tomorrow seems unlikely. It's very unlikely it's going to happen. The former Chief Minister M.K. Stalin has already resigned. We'll bring you more on this unfolding story. And I can tell you, there are some bizarre, perhaps unthinkable combinations which are now doing the rounds. Could we even see an attempt between the ADMK and the DMK to come together in some way, shape or form to deny Vijay a chance at governance? You heard that over here. We'll bring you that rumour which is coming in. The headlines. The stage is set for Vijay's oath. Suspense lingers on the date and time of the ceremony. Unlikely to be tomorrow. He met the governor, but sources say the governor wasn't convinced with the numbers. The gloves are off between the Congress and the DMK as the Congress supports the TVK. The DMK accuses the Congress of betrayal. The party says it is respecting the mandate. Tremors likely in the India bloc as well at a national level. Meanwhile, in Bengal, sources have told NDTV that Subhendu Adhikari is set to become the chief minister. A mega swearing-in ceremony is slated for the 9th. The Prime Minister and Amit Shah will attend. And NDTV dominates the counting day coverage, clocking double the viewership than the nearest competitor. NDTV gets 43.82 million views on our YouTube channel. So breaking news coming in now of a parallel power play in Tamil Nadu, with some reports suggesting, this is deep sources-based information, that the AIADMK and the DMK are exploring an alliance. Think about that. These are the biggest rivals, and they have been for decades in Tamil Nadu politics. But in an effort to keep Vijay out, are they exploring an alliance? Remember, the AIADMK has 47 seats, the DMK has 59. And with others, are they making a pitch for power? It is an unlikely alliance, no doubt, in Tamil Nadu. But these are pressure tactics on the TVK, quite clearly, despite that mandate. Is the TVK going to, is Vijay going to hold steady and firm, ride it out, get the little support that he requires? Or are we actually going to see the big two parties in Tamil Nadu do anything possible to try and break that opportunity? So that's what we've been tracking at this hour. Let's go straight across to NDTV's Veera Raghav, who's got more on this. Veera, unthinkable. DMK, ADMK, even to have them talk to each other is difficult. But are we seriously looking at an effort for them to come together in some way, shape or form?
8: I will dismiss this straight away. I think this is part of the planting information that's been going around to send this message across. I don't think this is possible, but then there are multiple confabulations and conversations that's happening at the moment, Vishnu. I must say that any effort to prevent Vijay from taking charge would be an extremely dangerous precedent in a state where we've not seen such a hung verdict and the fight for numbers that's playing out. It will not be taken lightly by the people who are watching. And I think this would be a dangerous experiment, to say the least, Vishnu. But I think there are multiple people trying to send out multiple information and multiple camps in every party, because there will be hard bargaining. One section of the TVK believes that the delay in allowing Vijay to be sworn in is a message from the BJP that if you're going to ally with the Congress, we're not going to take it lightly. Another section believes that there needs to be an alliance with the AIADMK to cohesively have the numbers. There's a large section within the AIADMK which wants to push for a TVK alliance, which we believe Edappadi Palanisamy is refusing to go in. So in the midst of this, there are multiple information and multiple reports that are coming in from different sections of the party. I think we need to discount much of this as we report it or perhaps talk about it at the moment with a question mark, Vishnu. I think it's unlikely at the moment. Vijay is still in pole position, but it would be very interesting to see what's going to happen over the next 48 hours.
9: All right, Veera, hold on for a second. Hold on for a second. Vasudha Venugopal also with us on the phone. Veera seems to suggest that this is more talk than anything else. It does seem fairly, for want of a better word, ludicrous to have the ADMK and DMK coming together to try and defeat Vijay come to power. What are you hearing?
10: Well, Vishnu, I do think that there are some serious attempts that are being made to explore these options. And Veera is right, because this is largely muscle flexing. This is also, a struggle for survival, because both these parties know that if

देख सकते हैं कि अंदर जा रहे हैं हम समर्थक जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बताऊँ की अभी तक जो है अस्पताल के अंदर है, आसपास का मंजर जो है बिल्कुल बेकाबू है और आसपास हम देख सकते हैं कि भारी बलों की तैनाती भी कर दी गई है। आनंद फरन में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बारे में हमें पुख्ता जानकारी नहीं है कि दरअसल ये हादसा हुआ, ये अपराध अंजाम किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि एक साजिश के तहत की गई है, दरअसल अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जितना जानकारी मैं ले पाया हूँ आनंद फरन में, बारासा जो नॉर्थ चौबीस परगना का सदर शहर है वहां पर एक सांगठनिक काम पे शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रॉत हो गए थे, काफिलों से वो जब लौट रहे थे तब उनके ऊपर जब एक दुकान पे उनकी गाड़ी रुक जाती है तो आरोप है कि पीछे से कुछ लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे। इस दौरान जो है उन पर गाड़ी पर गोली दागी गई है, शीशा चढ़ा हुआ था और उसके अंदर से गोली दागी गई है। मैं यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल के बीच लगातार हम देख सकते हैं कि पुलिस की आवाजाही बनी हुई है, केंद्रीय बल की तैनाती हो गई है, आसपास के वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। इस वक्त मैं आपको मौजूदा मंजर बता दू, अंदर शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए हैं, दरअसल वो काफी के लिए रवाना हो गए थे घर के लिए, आज चुनाव आयोग में वो पहुंचे थे और इस बंगाल में किसी भी तरीके से हिंसक वारदात ना हो इस पर सख्ती से पेश आया जाए, ऐसा ही बैठक जो सरकार बनने जा रहा था उनके एक मुखिया के तरफ से चुनाव आयोग तक पहुंचा गया था। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी जो होम सेकेंडरी उसके बैठक के दौरान भी सुमित भट्टाचार्य ने बात को स्पष्ट की थी। इसके बाद जो है इतनी बड़ी घटना, मैं आपको बताऊं चंद्रनाथ को हम अब खूब ही जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से उनसे हमारा परिचय था क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक करियर खासकर जब से वो विपक्ष के नेता बने वो तो इस कट्टावर नेता के बिल्कुल साये की तरह उनके साथ था, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो उनके बाहर। और मुझे याद आ रहा है कि जिस दिन भवानीपुर में बिल्कुल लास्ट जब प्रचार हुआ था उस दिन मेरे साथ चंद्रनाथ का मुलाकात हुआ, जब तमाम कैंपेन खत्म होने के बाद शुभेंदु अधिकारी जब भवानीपुर के एक दुर्गा मंदिर में पहुंचे थे तो हम लोगों ने उनसे बात भी की थी, तो उसके बाद जो है इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। और जब ये एक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए ये बड़ा मसला है, हम समझ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के जो जो पर्सनल असिस्टेंट है उनके ऊपर इस तरीके से हमला कर दी गई है। मैं लगातार यहाँ पर जो है भीड़ और जो विरोध प्रदर्शन का दौर मैं देख सकता हूँ बढ़ रहा है, खासकर उस साये समर्थक वो काबू नहीं हो रहा है, लगातार उस तरीके से मांगे उठी। मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग नेताओं से हमारा अभी तक बात हुआ है वो सीधे आरोप कर रहे हैं कि साजिश के तहत ये इस अपराध को अंजाम दिया गया है। आनंद फरन में जहाँ पर हम हैं यहाँ से घटनास्थल कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है वो कोलकाता की तरफ घटना हो जाता है, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी तभी हो पाएगी जब शुभेंदु अधिकारी अस्पताल के अंदर से बाहर आएंगे। दरअसल ये मंजर देखिए पूरा चुनाव जो दौर है बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा, मेरा आज चीफ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के तमाम आधिकारिक से शाम को बातें हो रही थी, प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ये भी बताया था कि इस बात पर तमाम कोशिश की जा रही है कि फिर से तनाव का स्थिति ना हो। इस बीच इतना बड़ा घटना हो जा रहा है कि एक सत्तारूढ़ पार्टी जो सत्ता पलट जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी जब उन्होंने इसका बागडोर संभाला है, सब समारोह 9 तारीख होना है, इस बीच मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगा उधर रनर जो है मुख्यमंत्री के दौर पर नौ शुभेंदु अधिकारी है उनमें से अव्वल आगे है, उनके ही पर्सनल असिस्टेंट के साथ इस तरीके से उसको खून कर दिया जाता है, वो भी कोलकाता शहर के बिल्कुल नजदीक और मध्यम ग्राम के ऐसे भरे बाजार इलाके में, हाईवे जो नेशनल हाईवे है उसके ऊपर गाड़ी जब रुकी तो अंधाधुंध गोली चलाई गई है। लेकिन तस्वीर हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि उस गाड़ी के सामने वाले सीट में वो बैठे हुए थे, उसी गाड़ी पर अंधाधुंध गोली चलाई गई है। अभी तक जो जानकारी हमें मिल पाई है 3 राउंड गोलियां दागा गया है।

0: गाड़ी वहां पर रुका हुआ था, शीशा चरा हुआ था। चंद्रनाथ बिल्कुल आगे बैठे हुए थे, गाड़ी के बिल्कुल पास से साइड से जो है गोली दागी गई है। उसके फौरन बाद उसे यहाँ से नजदीकी जो अस्पताल है जहाँ से हम सीधा प्रसारण कर रहे हैं वहां पर उन्हें लाया गया और मौके पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। और ये खबर मिलने के बाद शुभेंदु अधिकारी खुद साथी की तरफ रवाना हो गए।
1: All right, that is Ritik Mandal of NDTV live at the spot where the body of Chandranath has been brought. I will come to you, Ritik, in just a second. Give me 2 minutes because we've got BJP leader and candidate, also somebody who was a candidate in the just concluded election, Shatrupa, joining us on the phone line. Shatrupa, what more can you tell us? Any more details that you are getting of the nature of this attack?
2: No, Padmija, it's extremely sad and very shocking. That Chandranath, a very quiet, friendly, nice boy, who was Shivendra's PA, he's been shot dead. I believe somebody shot him from point blank, and there was three shots fired, two of which hit him, and probably even the driver is injured. He's been brought dead to the Madhyamgram Hospital now. Shivendra has reached, Shukantoda has reached, and I believe. Arjun Singh has also reached there. But it's a very, very sad and shocking incident because Chandranath was somebody who you couldn't be angry with. I mean, you know, he was such a cheerful boy. One had to, generally most, some of us have access to Shubhendra directly, but in case you needed to know Shubhendra's schedule or his movements, direct movements, Chandranath was the guy to call and he would always respond with a smile and a cheer in his voice. It's very shocking that somebody would want to, you know, this is one, you and I were in fact discussing on one show that there's been absolutely no violence in this entire election period. But Trinamool, I presume it is Trinamool, we don't know as yet. I mean, probably it is irresponsible of me to say this, but it has to be. I mean, who else would try to harm Shubhendra at this juncture? Where, you know, day after tomorrow, the swearing-in is going to happen. Tonight, as we are speaking, probably there is a meeting of the elected MLAs right now.
1: Yes.
2: And they're deciding the leader of the Vidhan Sabha Affairs, Legislative Affairs. CM will be decided and declared tomorrow. So this entire peaceful, exciting times that we are now has been just smeared with this one very, very, very sad and shocking incident.
1: Just terrible, terrible. The loss of a human life after what was hailed as a largely peaceful, bloodless election. No political violence. So you've also got now Union Minister Shukanta Majumdar, who's an MP from Balurghat in West Bengal, also reaching the hospital. Shivendu Adhikari is there. Shamik Bhattacharya is going there, who's the state president of the BJP. We already had the Biendu Adhikari saying earlier that the TMC is behind this attack. Now, of course, the finger pointing has started. Another member of the BJP, Devdas Mandal, BJP MLA, Devdas Mandal has now reacted, saying that the TMC is involved and the shooters will soon be tracked down. So names being taken now, as Shatrupa was also just saying, that in a process that was not marred by violence, is there an effort to try and instigate people to try and vitiate the atmosphere at a time when you've got, remember, on the night before the swearing-in is to take place, VIPs are going to be touching down in Kolkata. The Home Minister is expected there tomorrow. Subsequently, you've got all the NDA chief ministers. The Prime Minister himself is going to be in Kolkata for the swearing-in of the next chief minister. And at such a time, is there an effort to try and muddy waters, to try and provoke people? But one must say on NDTV, we are only reporting the facts and reporting it very, very cautiously. It's still far, far too early to find out who is behind this. So, there will be politics. Everyone must stay calm. Calm must prevail. Sane minds must prevail. Let's listen in to what the BJP MLA said.
3: देखिए तृणमूल ने जो किया है उसको अभी भी लग रहा है उसका सरकार है. तो तृणमूल ने जो किया है, जो कांड किया है, जे एक निरीह, एकदम इनोसेंट जिसको कातिल किया है, उसको कातिल किया, लेकिन वो शहीद हुआ है, पार्टी के लिए शहीद हुआ है. तो तृणमूल को क्या लगता है, तृणमूल जो किया है इस कारण उसको भुगतना ही पड़ेगा। अब निश्चिंत रहिए, उसको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, पाताल में रहे उसको ढूंढ के लाएंगे।
4: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिव।
1: मिस्टर घोष, व्हाट आर योर रिएक्शन, योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस हॉरिफिक मर्डर दैट इज बीइंग रिपोर्टेड फ्रॉम मध्यमग्राम टुडे? शुभेंदु अधिकारी पीए शॉट डेड एट क्लोज रेंज।
0: दिस इज वेरी वेरी बैड इंसिडेंट, वी स्ट्रॉन्गली कंडेम्ड। दिस इज वेरी वेरी बैड इंसिडेंट, इसका पूरा जांच होना चाहिए। पुलिस या कोर्ट मॉनिटर सीबीआई जो भी इसका पीछे हो, जो भी इसका पीछे हो, जिस लोग ये इसका हाथ है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और तुरंत आइडेंटिफाई करना चाहिए। भाजपा लीडर्स जो आरोप लगा रहा है, हम उसको सेंटिमेंट को समझ रहा है, वो पॉलिटिकली आरोप लगा रहा है, लेकिन टीएमसी अपने जो स्टेटमेंट है वो रिलीज कर चुका है। वी ऑल्सो स्ट्रॉन्गली कंडेम्ड, ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी तो स्टेट इलेक्शन कमीशन और राष्ट्रपति जी या गवर्नर साहब का अंडर में है, तो पूरा पुलिस या कोर्ट मॉनिटर सीबीआई जो भी हो, जो लोग किया, क्यों किया, मोटिव क्या है, ये पूरा जो भी, आई रिपीट, जो भी हो उसका पकड़ना चाहिए।
1: आपको क्या लगता है क्या मोटिव है?
0: देखिए अभी बोलना मुश्किल है क्योंकि ये जस्ट हम लोग, ये इंफॉर्मेशन आ चुका है, ये तो पुलिस डिटेल में बता सकता है। इसका साथ पॉलिटिक्स का कनेक्शन कितना है या कौन किया है, क्यों किया है, वो इंफॉर्मेशन के बिना इसके ऊपर कमेंट करना ठीक नहीं है। लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, वी स्ट्रॉन्गली कंडेम्ड दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट।
1: जी, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि साफ साफ जो उंगली है वो आप पे उठाई जा रही है, दिव्येंदु अधिकारी हो या फिर दो जो विधायक हैं भाजपा के जिनसे हमने बात की है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि अब तृणमूल कांग्रेस अराजकता का माहौल बनाना चाहती है पश्चिम बंगाल के अंदर।
0: देखिए हम उसका सेंटिमेंट समझ सकते हैं, उसका उसका एक कॉलिग के साथ ऐसा हुआ है, तो अभी ये इलेक्शन का जो माहौल चल रहा है, ये पॉलिटिकल ब्लेम, तो उसका सेंटिमेंट मैं समझ रहा हूँ। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का एक स्पोक्स पर्सन होने के नाते मैं इतना बोल सकता हूँ, इसके साथ तृणमूल, इसके पीछे तृणमूल नहीं है, तृणमूल क्यों करेंगे, और तृणमूल का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी हमारा हैंडल से रिलीज कर दिया गया।
1: पर किसी को क्या फायदा हो सकता है कि एक यू नो टू किल एन इनोसेंट पर्सन, समबडी हु सो क्लोज टू शुभेंदु अधिकारी, हु वुड गेन फ्रॉम कैरिंग आउट सच अ मर्डर? और मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये कोई स्पर ऑफ द मोमेंट क्राइम ऑफ पैशन नहीं है। इफ आई एम श्योर यू हैव सीन बाय नाउ दैट ही वाज शॉट एट क्लोज रेंज, ही वाज टेल्ड बाय पीपल, पीपल न्यू वेयर ही वाज सिटिंग, सो हिज कार वाज आइडेंटिफाइड, ये एक टारगेट किलिंग है।
0: Heard that the whole incident, but ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन किया, मोटिव क्या था, ये तुरंत पकड़ना चाहिए। पुलिस हो या कोर्ट मॉनिटर सीबीआई हो, जो भी हो, ये कौन लोग किया, क्यों किया, इलेक्शन तो हो चुका है, अभी तो न्यू गवर्नमेंट का ओथ टेकिंग का प्रोग्राम चल रहा है, इसके अंदर में ऐसा इंसिडेंट हम सोच भी नहीं सकते, ये कैसे हो रहा है, कौन लोग कर रहा है, क्यों किया है, बहुत बुरा किया है।
1: पर आपको अजीब नहीं लगता कि एट अ टाइम व्हेन देयर वाज सच हाइटेंड विजिल, जब सब कुछ पीसफुली निकल गया, तो ऐसा मर्डर हो जाए, कोई क्यों शुभेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर कोई क्यों करेगा?
0: ये तो यही तो क्वेश्चन है, जो इलेक्शन हो गया, अभी भाजपा का गवर्नमेंट का वोट चेकिंग का पूरा प्रोसेस चल रहा है, इस टाइम में उनका पीए को कौन मारेगा, और उसका मारा तो है जरूर, इतना बुरी तरह से मारा है, तो कौन मारा, उसका मोटिव क्या था, क्यों कर ये कर दिया, ये तो पूरा
5: अभी तुरंत

0: to understand, and what it seems like from a preliminary glance is that this was, like you mentioned, Padmaja, quite elaborate. If indeed this theory that is now being circulated is proven correct, that there was some car in front which was a result of why Chandra's car had to slow down. If all of this adds up, if all of this is pieced together and this is true, then this is quite a shocking incident. Not only is it a shocking incident, but quite an elaborate plan.
1: इसके फौरन बाद जो है उनके गाड़ियों पर गोली दागी गई है। पुलिस के हवाले से जो हमें खबरें मिल पा रही है वो तीन गोलियां लगाया, उसके बाद फौरन उन्हें आनंद फरन में इसी अस्पताल में लाया गया है। और फिलहाल जो है हम जो बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। भीड़ जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं और तमाम जो समर्थक थे वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक जो हमें बताया नहीं गया है कि ये दरअसल कौन साजिश रचा है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ये बिल्कुल साजिश के तहत ये घटना घटाई गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये दरअसल जो बताया जा रहा था कि आज जब शाम को हमारा मुलाकात हुआ था शुभेंदु अधिकारी से, जब इलेक्शन कमीशन के दफ्तर वो पहुंचे हुए थे, तब उन्होंने ये कहा था प्रेस वार्ता के दौरान कि पार्टी की तरफ से ये निर्देश तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को पहुंच गया है और चीफ इलेक्शन कमीशन से भी मिलकर उन्होंने ये वायदा किया है जिस तरीके से पोस्टपोल वायलेंस या फिर हिंसा की खबरें आ रही है उस पर रोक लगाई जाएगी। सोमिक भट्टाचार्य आज दोपहर को स्टेट सेक्रेटरियट नवान्नों में पहुंचकर जब उन्होंने बात की होम सेक्रेटरी से, उस बैठक के दौरान भी ये निर्देश दिया गया था कि जो है कि इस पर सख्ती की जाएगी, कोई कोठाई नहीं दिखा जाएगा कि बंगाल में हिंसा हो। इससे शुभेंदु अधिकारी जो कटावर देता है चुनाव के नतीजे के बाद जो है उनकी ही पर्सनल असिस्टेंट के ऊपर गोली चल जाती है। हालांकि इसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है कौन है वो लोग। देखिए मैं यहाँ पर अफरी तफरी का माहौल है, सीधा प्रशासन हमारा एनडीटीवी के दर्शक स्थल पहुंचा रहा हूँ। ये जैसे उन्मादी फिर आप जो है अस्पताल के अंदर दाखिल हो रहे हैं, बिल्कुल बेकाबू होते जो लोग हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अंदर जा रहे हैं। हम समर्थक जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बताऊँ की अभी तक जो है शुभेंदु अधिकारी इसी अस्पताल के अंदर है। आसपास का मंजर जो है बिल्कुल बेकाबू है और आसपास हम देख सकते हैं कि भारी बलों की तैनाती भी कर दी गई है। आनंद फरन में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बारे में हमें पुख्ता जानकारी नहीं है कि दरअसल ये हादसा है, ये अपराध अंजाम किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि एक साजिश के तहत की गई है, दरअसल अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जितना जानकारी मैं ले पाया हूं आनंद फरन में, बारासा जो नॉर्थ 24 परगना का सदर शहर है वहां पर एक सांगठनिक काम से शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रॉथ हो गए थे। काफिले से वो जब लौट रहे थे तब उनके ऊपर जब एक दुकान पे उनकी गाड़ी रुक जाती है तो आरोप है कि पीछे से कुछ लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे। इस दौरान जो है उन पर गाड़ी पर गोली दागी गई है, शीशा चढ़ा हुआ था और उसके अंदर से गोली दागी गई है। मैं यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल के बीच लगातार हम देख सकते हैं कि पुलिस की आवाजाही बनी हुई है, केंद्रीय बल की तैनाती हो गई है, आसपास के वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। इस वक्त मैं आपको मौजूदा मंजर बता दूं, अंदर शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए हैं, दरअसल वो काफी के लिए रवाना हो गए थे घर के लिए, आज चुनाव आयोग में वो पहुंचे थे और इस बंगाल में किसी भी तरीके से हिंसक वारदात ना हो इस पर सख्ती से पेश आया जाए, ऐसा ही बैठक जो सरकार बनने जा रहा था उनके एक मुखिया के तरफ से चुनाव आयोग तक पहुंचा गया था। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी जो होम सेकेंडली उसके बैठक के दौरान भी सोमिक भट्टाचार्य ने बात को स्पष्ट की थी। इसके बाद जो है इतनी बड़ी घटना, मैं आपको बताऊं चंद्रनाथ को हम अब खूबी जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से उनसे हमारा परिचय था क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक करियर खासकर जब से वो विपक्ष के नेता बने वो तो इस कट्टावर नेता के बिल्कुल साए की तरह उनके साथ था, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो उनके बाहर।

0: मुझे याद आ रहा है कि जिस दिन भवानीपुर में बिल्कुल लास्ट जब प्रचार हुआ था, उस दिन मेरे साथ चंद्रनाथ का मुलाकात हुआ। जब तमाम कैंपेन खत्म होने के बाद शुभेंदु अधिकारी जब भवानीपुर के एक दुर्गा मंदिर में पहुंचे थे, तो हम लोगों ने उनसे बात भी की थी। तो उसके बाद जो है इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। और जब ये एक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए ये बड़ा मसला है। हम समझ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के जो पर्सनल असिस्टेंट है उनके ऊपर इस तरीके से हमला कर दी गई है। मैं लगातार यहाँ पर जो है भीड़ और जो विरोध प्रदर्शन का दौर मैं देख सकता हूँ बढ़ रहा है। खासकर उत्साह समर्थक वो काबू नहीं हो रहा है, लगातार मांगे उठ रही है। मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग नेताओं से हमारा अभी तक बात हुआ है वो सीधे आरोप कर रहे हैं कि साजिश के तहत ये इस अपराध को अंजाम दिया गया है। आनंद फानंद में जहाँ पर हम है यहाँ से घटना स्थल कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है, वो कोलकाता की तरफ घटना हो जाता है, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी कभी हो पाएगी जब शुभेंदु अधिकारी अस्पताल के अंदर से बाहर आएंगे। दरअसल ये मंजर देखिए पूरा चुनाव जो दौर है बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा। मेरा आज चीफ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के तमाम आधिकारिक से शाम को बातें हो रही थी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ये भी बताया था कि इस बात पर तमाम कोशिश की जा रही है कि फिर से तनाव का स्थिति ना हो। इस बीच इतना बड़ा घटना हो जा रहा है कि एक सत्तारूढ़ पार्टी जो सत्ता पलट जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी जब उन्होंने इसका बागडोर संभाला है, सब समारोह 9 तारीख होना है। इस बीच मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगा उधर रनर जो है मुख्यमंत्री के दौर पर 9 शुभेंदु अधिकारी है, उनमें से अव्वल आगे है। उनके ही पर्सनल असिस्टेंट के साथ इस तरीके से उसको खून कर दिया जाता है, वो भी कोलकाता शहर के बिल्कुल नजदीक और मध्यम ग्राम के ऐसे भरे बाजार इलाके में। हाईवे जो नेशनल हाईवे है उसके ऊपर गाड़ी जब रुकी तो अंधाधुंध गोली चलाई गई है। लेकिन तस्वीर हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि उस गाड़ी के सामने वाले सीट में वो बैठे हुए थे, उसी गाड़ी पर अंधाधुंध गोली चलाई गई है। अभी तक जो जानकारी हमें मिल पाई है 3 राउंड गोलियां दागा गया है। गाड़ी वहां पर रुका हुआ था, शीशा चरा हुआ था, चंद्रनाथ बिल्कुल आगे बैठे हुए थे, गाड़ी के बिल्कुल पास से साइड से जो है गोली दागी गई है। उसके फौरन बाद उसे यहाँ से नजदीकी जो अस्पताल है जहां से हम सीधा प्रसारण कर रहे हैं वहां पर उन्हें लाया गया और मौके पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। और ये खबर मिलने के बाद शुभेंदु अधिकारी खुद साथी की तरफ हो रखना मुझे।
1: All right, that is Ritik Mandal of NDTV live at the spot where the body of Chandranath has been brought. I will come to you, Ritik, in just a second. Give me 2 minutes because we've got BJP leader and candidate also, somebody who was a candidate in the just concluded election, Shatrupa, joining us on the phone line. Shatrupa, what more can you tell us? Any more details that you are getting of the nature of this attack?
2: No, Padmija, it's extremely sad and very shocking. That Chandranath, a very quiet, friendly, nice boy who was Shivendra's PA, he's been shot dead. I believe somebody shot him from point blank and there were three shots fired, two of which hit him and probably even the driver is injured. He's been brought dead to the Madhyam Gram Hospital now. Shivendra has reached, Shukantoda has reached, and I believe... Arjun Singh has also reached there. But it's a very, very sad and shocking incident because Chandranath was somebody who you couldn't be angry with. I mean, you know, he was such a cheerful boy. One had to, generally most, some of us have access to Shubhendra directly, but in case you needed to know Shubhendra's schedule or his movements, direct movements, Chandranath was the guy to call and he would always respond with a smile and a cheer in his voice. It's very shocking that somebody would want to, you know, this is one, you and I were in fact discussing on one show that there's been absolutely no violence in this entire election period. But Trinamool, I presume it is Trinamool, we don't know as yet. I mean, probably it is irresponsible of me to say this, but it has to be. I mean, who else would try to harm

0: We're going to see between now and tomorrow at the oath-taking ceremony where I'm standing right now. But those images, those papers in Vijay's hand, the meeting with the governor who spoke to Vasudha before, that conversation with Vijay, all of it aligns right now. The magnificence of the Vijay mandate means, 2 weeks to prove your...
1: दिव्येंदु अधिकारी इज विद अस ऑन द फोन लाइन. दिव्येंदु दा, क्या बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ, घटना कहां हुई, कैसे हुई?
2: भोजन निजाम पैलेस से शुभेंदु अधिकारी जी का कफिला निकल गया घंटा के लिए रेसिडेंस के लिए. उसके बाद वो निकला था, उसको देख के किया गया था कई दिन से. भवानीपुर जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में बढ़िया रोल प्ले किया था. आई एम अप्रिहेंडिंग दैट टीएमसी गोन्स आर एक क्या है. मैं ये मांग करता हूँ कि अभी सीबीआई जांच का जांच दिया जाए और इनका सीएफएसएल से फॉरेंसिक लेवल से इनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और एम्स कल्याणी में इसको पोस्टमार्टम के लिए भी बंदोबस्त करना चाहिए.
1: जी, आप कह रहे हैं कि ये जो राजनीतिक राइवलरी है उसकी वजह से हुआ है, पर कहां पे हुआ है, किसने मारा है, कितने लोग थे, क्या मोटरसाइकिल पे आए थे, कुछ अभी डिटेल्स आपको पता चली?
2: भाई कार था, भाई स्कॉर्पियो कार था और ड्राइवर और दोनों आदमी था, वो वहां का रहने वाला है.
1: अभी अभी शुभेंदु जी किधर पे है? Mr. Adhikari, was Shubhendu Adhikari also supposed to be in this car along with Chandranath?
2: No. Shubhendu Adhikari is not with his car.
1: नहीं, but क्या उनको इस गाड़ी में ही रहना था? क्या ये शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी है जिसमें चंद्रनाथ भी अमूमन उनके साथ चलते थे?
2: चंद्रनाथ इसका पीए है. शुभेंदु वो चंद्रनाथ उसका खुद का कार में था.
1: अच्छा, वो अलग गाड़ी में थे. क्या आपको अभी कुछ डिटेल्स पता चल रही हैं कि कितने लोग थे, क्या वो मोटरसाइकिल?
2: डिटेल नहीं पता चला है.
1: क्या वो गाड़ी का पीछा कर रहे थे?
2: हाँ, गाड़ी का पीछा कर रहे थे.
1: जो चंद्रनाथ हैं वो क्या शुभेंदु जी से मिलने आ रहे थे?
2: नहीं नहीं, ऑफिस खत्म करके जब निजाम पैलेस से आ रहा था ऑन वे टू कोंटाई, चंद्रनाथ मूविंग टुवर्ड्स हिज रेसिडेंस एट मध्यमग्राम.
1: वो कोंटाई आ रहे थे
2: जी.
1: तो शुभेंदु जी को तो कोई खतरा नहीं है, उनको तो कोई आसपास नहीं थे ना, वो जहाँ पे अटैक हुआ है उसके आसपास तो नहीं थे वो
2: जी?
1: जिस जगह पे हमला हुआ है उसके आसपास शुभेंदु अधिकारी तो नहीं थे क्या? आगे पीछे किसी गाड़ी में तो नहीं थे वो?
2: आसपास नहीं थे, आसपास नहीं.
1: क्या किसी तरीके की धमकी मिली थी पिछले कुछ दिनों में शुभेंदु जी को या फिर चंद्रनाथ?
2: आई एम नॉट एबल टू सेव यू मोर मैडम, काइंडली एक्सक्यूज मी, आई एम ऑन वे टू चंद्रनाथ रेसिडेंस.
1: ओके, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. थैंक यू वेरी मच मिस्टर दिव्येंदु अधिकारी. दैट इज शुभेंदु अधिकारी's ब्रदर, ऑल्सो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. Giving very, very sketchy details at this point but a couple of things that he has told us, which is important, is that he was moving from Madhyamgram to Kontai. Kontai, of course, is the area where the entire Adhikari family is based out of. Shubhendu Adhikari was nowhere in the vicinity. He was not in the car, nor was he in any of the cars ahead or behind. This was his PA who was traveling in a car with the driver. The driver is hospitalized and Chandru has been killed in that attack where 4 bullets were fired at close range, at point blank range, which is what we are being told now. And he died pretty much on the spot. The driver, though, has been taken to hospital. Any blanks that you would want to fill in at this point, Shreyasi, based on what you are hearing now and what Saurabh is hearing? I'll go to Saurabh in just a second. Anything more that you're hearing in addition to what Dibyendu Adhikari just said?
3: Well, what we have picked up is the BJP state president, Shobhik Bhattacharya, who resides in Bidhan Nagar here near Madhumgram, is on his way to the hospital where Chandrakant is at this point in time. Of course, this is a shocking incident that is coming out of West Bengal at this point in time, where Shubhendu Adhikari's personal assistant has been shot dead. What Shubhendu Adhikari's brother also just speaking

0: circulated is proven correct, that there was some car in front which was the result of why Chandra's car had to slow down. If all of this adds up, if all of this is pieced together and this is true, then this is quite a shocking incident. Not only is it a shocking incident, but quite an elaborate plan.
1: इसके फौरन बाद जो है उनके गाड़ियों पर गोली दागी गई है। पुलिस के हवाले से जो हमें खबरें मिल पा रही है वो तीन गोलियां लगा है, उसके बाद फौरन उन्हें आनंद फरन में इसी अस्पताल में लाया गया है। और फिलहाल जो है हम जो बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। भीड़ जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं और तमाम जो समर्थक है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक जो हमें बताया नहीं गया है कि ये दरअसल कौन साजिश रचा है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ये बिल्कुल साजिश के तहत ये घटना घटाई गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये दरअसल जो बताया जा रहा था कि आज जब शाम को हमारा मुलाकात हुआ था शुभेंदु अधिकारी से, जब इलेक्शन कमीशन के दफ्तर को पहुंचे हुए थे, तब उन्होंने ये कहा था प्रेस वार्ता के दौरान कि पार्टी की तरफ से ये निर्देश तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को पहुंच गया है और चीफ इलेक्शन कमीशन से भी मिलकर उन्होंने ये वायदा किया है जिस तरीके से पोस्टपोल वायलेंस या फिर हिंसा की खबरें आ रही है उस पर रोक लगाई जाएगी। सोमेश भट्टाचार्य आज दोपहर को स्टेट सेक्रेटरिएट गवर्नर में पहुंचकर जब उन्होंने बात की होम सेक्रेटरी से, उस बैठक के दौरान भी ये निर्देश दिया गया था कि जो है कि इस पर सख्ती की जाएगी, कोई कोठाई नहीं दिखा जाएगा कि बंगाल में हिंसा हो। इससे शुभेंदु अधिकारी जो कटावर देता है चुनाव के नतीजे के बाद जो है उनकी ही पर्सनल असिस्टेंट के ऊपर गोली चल जाती है। हालांकि इसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है कौन है वो लोग। देखिए मैं यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है, सीधा प्रशासन हमारा एनडीटीवी के दर्शकों तक पहुंचा रहा हूँ। ये जैसे उन्मादी भीड़ अब जो है अस्पताल के अंदर दाखिल हो रहे हैं, बिल्कुल बेकाबू होते जो लोग हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अंदर जा रहे हैं। हम समर्थक जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बताऊँ की अभी तक जो है शुभेंदु अधिकारी इसी अस्पताल के अंदर है, आसपास का मंजर जो है बिल्कुल बेकाबू है और आसपास हम देख सकते हैं कि भारी बलों की तैनाती भी कर दी गई है। आनंद फरन में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बारे में हमें पुख्ता जानकारी नहीं है कि दरअसल ये हादसा है, ये अपराध अंजाम किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि एक साजिश के तहत की गई है, दरअसल अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जितना जानकारी मैं ले पाया हूं आनंद फरन में, बारासा जो नॉर्थ 24 कोरबा का सदर शहर है वहां पर एक सांगठनिक ने काम से शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रॉथ हो गए थे, काफिलों से वो जब लौट रहे थे तब उनके ऊपर जब एक दुकान पे उनकी गाड़ी रुक जाती है तो आरोप है कि पीछे से कुछ लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे। इस दौरान जो है उन पर गाड़ी पर गोली दागी गई है, शीशा चढ़ा हुआ था और उसके अंदर से गोली दागी गई है। मैं यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल के बीच लगातार हम देख सकते हैं कि पुलिस की आवाजाही बनी हुई है, केंद्रीय बल की तैनाती हो गई है, आसपास के वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। इस वक्त मैं आपको मौजूदा मंजर बता दूं, अंदर शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए हैं, दरअसल वो काफी के लिए रवाना हो गए थे घर के लिए, आज चुनाव आयोग में वो पहुंचे थे और इस बंगाल में किसी भी तरीके से हिंसक वारदात ना हो इस पर सख्ती से पेश आया जाए, ऐसा ही बैठक जो सरकार बनने जा रहा था उनके एक मुखिया के तरफ से चुनाव आयोग तक पहुंचा गया था। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी जो होम सेकेंडरी उसके बैठक के दौरान भी सोमेश भट्टाचार्य ने बात को स्पष्ट की थी। इसके बाद जो है इतनी बड़ी घटना, मैं आपको बताऊं चंद्रनाथ को हम अब खूबी जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से उनसे हमारा परिचय था, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक करियर खासकर जब से वो विपक्ष के नेता बने वो तो इस कट्टावर नेता के बिल्कुल साए की तरह उनके साथ था, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो उनके बाहर। और मुझे याद आ रहा है कि जिस दिन भवानीपुर में बिल्कुल लास्ट जब प्रचार हुआ था उस दिन मेरे साथ चंद्रनाथ का मुलाकात हुआ, जब तमाम कैंपेन खत्म होने के बाद शुभेंदु अधिकारी जब भवानीपुर के एक दुर्गा मंदिर में पहुंचे थे तो हम लोगों ने उनसे बात भी की थी। तो उसके बाद जो है इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। और जब ये एक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए ये बड़ा मसला है, हम समझ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के जो पर्सनल असिस्टेंट है उनके ऊपर इस तरीके से हमला कर दी गई है। मैं लगातार यहाँ पर जो है भीड़ और जो विरोध प्रदर्शन का दौर मैं देख सकता हूँ बढ़ रहा है, खासकर उस साये समर्थक वो काबू नहीं हो रहा है, लगातार मांगे उठ रही है। मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग नेताओं से हमारा अभी तक बात हुआ है वो सीधे आरोप कर रहे हैं कि साजिश के तहत ये इस अपराध को अंजाम दिया गया है। आनंद फानंद में जहाँ पर हम है यहाँ से घटनास्थल कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है वो कोलकाता की तरफ घटना हो जाता है, लेकिन इसके बारे में पूरा जानकारी तभी हो पाएगी जब शुभेंदु अधिकारी अस्पताल के अंदर से बाहर आएंगे। दरअसल ये मंजर देखिए पूरा चुनाव जो दौर है बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा। मेरा आज चीफ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के तमाम आधिकारिक से शाम को बातें हो रही थी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ये भी बताया था कि इस बात पर तमाम कोशिश की जा रही है कि फिर से तनाव का स्थिति ना हो। इस बीच इतना बड़ा घटना हो जा रहा है कि एक सत्तारूढ़ पार्टी जो सत्ता पलट जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी जब उन्होंने इसका बागडोर संभाला है, सब समारोह 9 तारीख होना है। इस बीच मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगा उधर रनर जो है मुख्यमंत्री के दौर पर नौ शुभेंदु अधिकारी है, उनमें से अव्वल आगे है, उनके ही पर्सनल असिस्टेंट के साथ इस तरीके से उसको खून कर दिया जाता है, वो भी कोलकाता शहर के बिल्कुल नजदीक और मध्यम ग्राम के ऐसे भरे बाजार इलाके में, हाईवे जो नेशनल हाईवे है उसके ऊपर गाड़ी जब रुकी तो अंधाधुंध गोली चलाई गई है। लेकिन तस्वीर हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि उस गाड़ी के सामने वाले सीट में वो बैठे हुए थे, उसी गाड़ी पर अंधाधुंध गोली चलाई गई है। अभी तक जो जानकारी हमें मिल पाई है 3 राउंड गोलियां दागा गया है, गाड़ी वहां पर रुका हुआ था, शीशा जरा हुआ था, चंद्रनाथ बिल्कुल आगे बैठे हुए थे, गाड़ी के बिल्कुल पास से साइड से जो है गोली दागी गई है, उसके फौरन बाद उसे यहाँ से नजदीकी जो अस्पताल है जहां से हम सीधा प्रसारण कर रहे हैं वहां पर उन्हें लाया गया और मौके पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। और ये खबर मिलने के बाद शुभेंदु अधिकारी खुद साथी की तरफ हो रहा है।
2: All right, that is Ritik Mandal of NDTV live at the spot where the body of Chandranath has been brought. I will come to you, Ritik, in just a second. Give me 2 minutes because we've got BJP leader and candidate, also somebody who was a candidate in the just concluded election, Shatrupa, joining us on the phone line. Shatrupa, what more can you tell us? Any more details that you are getting of the nature of this attack?
3: No, Padmija, it's extremely sad and very shocking that Chandranath, a very quiet, friendly, nice boy who was Shivendra's PA, he's been shot dead. I believe somebody shot him from point blank and there were three shots fired, two of which hit him and probably even the driver is injured. He's been brought dead to the Madhyamgram Hospital now. Shivendra has reached, Shukantoda has reached, and I believe Arjun Singh has also reached there. But it's a very, very sad and shocking incident because Chandranath was somebody who you couldn't be angry with. I mean, you know, he was such a cheerful boy. One had to, generally most, some of us have access to Shubhendra directly, but in case you needed to know Shubhendra's schedule or his movements, direct movements, Chandranath was the guy to call and he would always respond with a smile and a cheer in his voice. It's very shocking that somebody would want to, you know, this is one, you and I were in fact discussing on one show that there's been absolutely no violence in this entire election period. But Srinamool I presume it is Trinamool. We don't know as yet. I mean, probably it is irresponsible of me to say this, but it has to be. I mean, who else would try to harm Shubhendu Da at this juncture, where, day after tomorrow, the swearing-in is going to happen. Tonight, as we are speaking, probably there is a meeting of the elected MLAs right now.
2: Yes.
3: And they're deciding the leader of the Vidhan Sabha affairs, legislative affairs. CM will be decided and declared tomorrow. So this entire peaceful, exciting times that we are now has been just smeared with this one very, very, very sad and shocking incident.
2: Just terrible, terrible. The loss of a human life after what was hailed as a largely peaceful, bloodless election. No political violence. So you've also got now Union Minister Shukanta Majumdar, who's an MP from Balurghat in West Bengal, also reaching the hospital. Shivindu Adhikari is there. Shamik Bhattacharya is going there, who's the state president of the BJP. We already had the Biendu Adhikari saying earlier that the TMC is behind this attack. Now, of course, the finger pointing has started. Another member of the BJP, Devdas Mandal, BJP MLA Devdas Mandal, has now reacted, saying that the TMC is involved and the shooters will soon be tracked down. So names being taken now, as Chatrupa was also just saying, that in a process that was not marred by violence, is there an effort to try and instigate people to try and vitiate the atmosphere at a time when you've got, remember, on the night before the swearing-in is to take place, VIPs are going to be touching down in Kolkata. The Home Minister is expected there tomorrow. Subsequently, you've got all the NDA chief ministers. The Prime Minister himself is going to be in Kolkata for the swearing-in of the next chief minister. And at such a time, is there an effort to try and muddy waters, to try and provoke people? But one must say, on NDTV, we are only reporting the facts and reporting it very, very cautiously. It's still far, far too early to find out who is behind this. So, there will be politics. Everyone must stay calm. Calm must prevail. Sane minds must prevail. Let's listen in to what the BJP MLA said.
4: देखिए तृणमूल ने जो किया है उसको अभी भी लग रहा है उसका सरकार है. तो तृणमूल ने जो किया है, जो कांड किया है, जे एक निरीह, एकदम इनोसेंट जिसको कातिल किया है, उसको कातिल किया, लेकिन वो शहीद हुआ है, पार्टी के लिए शहीद हुआ है. तो तृणमूल को क्या लगता है? तृणमूल जो किया है, इस कारण उसको भुगतना ही पड़ेगा. अब निश्चिंत रहिए, उसको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, पाताल में रहे, उसको ढूंढ के लाएंगे.
5: Bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given.
2: Mr. Ghosh, what are your reaction, your first reaction to this horrific murder that is being reported from Madhyamgram today? Shivindu Adhikari's PA shot dead at close range.
6: This is very, very bad incident. We strongly condemned. This is very, very bad incident. इसका पूरा जांच होना चाहिए. पुलिस या कोर्ट मॉनिटर सीबीआई जो भी इसका पीछे हो, जो भी इसका पीछे हो, जिस लोग ये इसका हाथ है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और तुरंत आइडेंटिफाई करना चाहिए. भाजपा लीडर्स जो आरोप लगा रहा है, हम उसको सेंटिमेंट को समझ रहा है, वो पॉलिटिकली आरोप लगा रहा है, लेकिन टीएमसी अपने जो स्टेटमेंट है वो रिलीज कर चुका है. वी आल्सो स्ट्रॉन्गली कंडेम्ड. ऐसा होना नहीं चाहिए. अभी तो स्टेट इलेक्शन कमीशन और राष्ट्रपति जी या गवर्नर साहब का अंडर में है, तो पूरा पुलिस या कोर्ट मॉनिटर सीबीआई जो भी हो, जो लोग किया, क्यों किया, मोटिव क्या है, ये पूरा जो भी हो, आई रिपीट, जो भी हो उसका पकड़ना चाहिए.
2: आपको क्या लगता है, क्या मोटिव है?
6: देखिए अभी बोलना मुश्किल है, क्योंकि ये जस्ट हम लोग इंफॉर्मेशन आ चुका है. ये तो पुलिस डिटेल में बता सकता है, इसका साथ पॉलिटिक्स का कनेक्शन कितना है या कौन किया है, क्यों किया है, वो इंफॉर्मेशन के बिना इसके ऊपर कमेंट करना ठीक नहीं है, लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ. वी स्ट्रॉन्गली कंडेम्ड दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट.
2: जी, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि साफ साफ जो उंगली है वो आप पे उठाई जा रही है, दिव्येंदु अधिकारी हो या फिर दो जो

0: विधायक हैं भाजपा के, जिनसे हमने बात की है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि अब तृणमूल कांग्रेस अराजकता का माहौल बनाना चाहती है पश्चिम बंगाल के अंदर।
1: देखिए, हम उसका सेंटिमेंट समझ सकते हैं, उसका उसका एक कॉलिग के साथ ऐसा हुआ है। तो अभी ये इलेक्शन का जो माहौल चल रहा है, ये पॉलिटिकल ब्लेम, तो उसका सेंटिमेंट मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का एक स्पोक्स पर्सन होने के नाते मैं इतना बोल सकता हूँ, इसके साथ तृणमूल, इसके पीछे तृणमूल नहीं है, तृणमूल क्यों करेंगे। और तृणमूल का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी हमारा हैंडल से रिलीज कर दिया गया।
0: पर किसी को क्या फायदा हो सकता है कि एक यू नो टू किल एन इनोसेंट पर्सन, समबडी हु वाज सो क्लोज टू शिवेंदु अधिकारी, हु वुड गेन फ्रॉम कैरिंग आउट सच अ मर्डर। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये कोई स्पर ऑफ द मोमेंट क्राइम ऑफ पैशन नहीं है। इफ आई एम श्योर यू हैव सीन बाय नाउ दैट इट ही वाज शॉट एट क्लोज रेंज, he was tailed by people, people knew where he was sitting, so his car was identified. ye ek target killing hai,
1: ye I heard that the whole incident, but ye kaise hua, kyun hua, kaun kiya, motive kya tha, ye turant pakadna chahiye, police ho ya court monitored, cbi ho, jo bhi ho, ye kaun log kiya, kyun kiya, election to ho chuka hai, abhi to न्यू गवर्नमेंट का ओथ टेकिंग का प्रोग्राम चल रहा है, इसके अंदर में ऐसा इंसिडेंट हम सोच भी नहीं सकते, ये कैसे हो रहा है, कौन लोग कर रहा है, क्यों किया है, बहुत बुरा किया है।
0: पर आपको अजीब नहीं लगता कि एट अ टाइम व्हेन देयर वाज सच हाइटेंड विजिल, जब सब कुछ पीसफुली निकल गया, तो ऐसा मर्डर हो जाए, कोई क्यों शुभेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर कोई क्यों करेगा?
1: ये ही तो क्वेश्चन है। जो इलेक्शन हो गया, अभी भाजपा का गवर्नमेंट का वोट चेकिंग का पूरा प्रोसेस चल रहा है, इस टाइम में उनका पीए को कौन मारेगा? और उसका मारा तो है जरूर, इतना बुरी तरह से मारा है, तो कौन मारा, उसका मोटिव क्या था, क्यों कर ये कर दिया, ये तो पूरा अभी तुरंत इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, नहीं तो ये तो एक मिसकम्युनिकेशन, एक सेंटिमेंटल आउटबर्स्ट हो जा रहा है भाजपा वालों को, कि पूरा ये प्रॉपरली तो तुरंत ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। जब इलेक्शन का मेन पार्ट खत्म हो गया है, न्यू गवर्नमेंट का ओथ टेकिंग का पूरा प्रोसेस चल रहा है, इस टाइम में इतनी बुरी तरह से ये ब्रूटल मर्डर, ये कैसे हो सकते है? हम लोग फिर से मैं कह रहा हूँ, अभी तो डिटेल इंफॉर्मेशन पूरा नहीं है, बहुत बुरा हुआ, और भाजपा लीडर्स का सेंटिमेंट भी हम समझ रहा हूँ, तो उसका कॉलिग का ऐसा ब्रूटल मर्डर हुआ, तो उसको तो इमोशनल आउटबर्स्ट, तो देखिए तो ह्यूमन है, होगा ही, लेकिन ये कौन लोग किया, क्यों किया, ये तो पूरा अभी एक पूरा इन्वेस्टिगेशन तुरंत होना चाहिए।
0: Because this is not just about one murder. Because पिछले दो दिनों में जितने भी अभी attacks हुए हैं, whatever attacks have taken place in West Bengal, a very startling claim was made by the BJP late this evening, where they said that Trinamool people are donning BJP uniform, or they are, you know, putting BJP safa, they are putting tilak, and they are carrying out these attacks. So they are accusing your party of deliberately trying to create violence and unrest in West Bengal.
1: ये हमारा नहीं, हमारा पास वीडियो भी है, वो देखिए, यहाँ पर हमारा वर्कर्स की भी मौत हो गया है, तीन आदमी का मौत हो गया है, मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, हमारा आदमी का भी मौत हुआ है, लेकिन ये जो हुआ है, जो जिस तरह मोडस ऑपरेंडी जो था, जो प्री प्लान्ड वे से जो हुआ, ये होना नहीं चाहिए था, बहुत बुरा हुआ, हर एक हमारा जो वर्कर्स का मौत हुआ है वो भी बहुत खराब है, लेकिन आज ये इस तरह वो शुभेंदु जी का जो सेक्रेटरी का मर्डर हुआ, वो कौन करेगा, मोटिव क्या है, उसका साथ डायरेक्ट पॉलिटिकल तो कोई क्लैश का बात नहीं था, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
0: ओके, absolutely, it is very, very important that this be found out and those people be dragged over the coals and be thrown into jail. Kunal Ghosh though says that there is absolutely no reason to suspect Trinamool Congress. They have also asked for a central probe to find